0: ঘুরে বেড়াই, আজকে কিছু নেই তাও মানুষের সাথে, আর এই সরকারের থেকে আমি নিরাপত্তা আশাও করি না।
1: দিস ওয়াজ আ প্ল্যান্ড অ্যাসল্ট, ইট ওয়াজ আ অ্যাসল্ট, ইট ওয়াজ, ইউ স দ্য ভিডিওস, ইট ওয়াজ লিঞ্চিং টেকিং প্লেস, নট বিকজ আই এম সেইং সো, ইউ স অফ আ গ্রুপ, বিকজ হি হ্যাড অ্যানাউন্স দিস ট্রিপ, হি হ্যাড অ্যানাউন্স দিস, ওয়্যার ওয়াজ দ্য পুলিশ, ওয়্যার ওয়াজ দ্য প্রোটেকশন। There is one particular video which you must see where a brick was being thrown at him, not because I'm making it up. Please see that video. Because he was wearing a helmet, God forbid something worse could have happened. So this is the first, a complete breakdown of law and order. All the big talk about peace and harmony, this was BJP supporters doing this deliberately.
2: Abhishek Banerjee ka upar जो हमला हुआ वो प्री प्लैंड, वो कंस्पिरेसी है। ये लोग क्या कर रहे थे, इसका पुलिस क्या कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन, ये वही अभिषेक है जो कुछ दिन पहले देश का जब जरूरत था एमपी लोगों को टीम भेजना है हर एक देश में, उसमें एक था ये अभिषेक बैनर्जी। कैसे विंडिक्टिव पॉलिटिक्स हो रहा है ये पूरा आज खुल्लम खुल्ला पूरा देश, पूरा वर्ल्ड देख लिया। अभिषेक बैनर्जी का एक दूसरा इनिंग्स आज से शुरू हो रहा है।
3: भारतीय जनता पार्टी का ये कोई कार्यक्रम में नहीं था। तृणमूल कांग्रेस का क्या वर्ताव था, क्या आचरण था उसका पिछले 15 साल में, वो लोगों को मालूम है। अभी जिस जनता को वो लोग घर से निकाल दिया गया, जिसको पीटा गया, मारा गया, जिस परिवार में बलात्कार हुआ था, वो लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो तो प्रशासन इसके ऊपर बात कर सकते हैं, पुलिस को देखना चाहिए। और तृणमूल कांग्रेस का कोई नैतिक या राजनीतिक अधिकार नहीं इसके ऊपर कोई टिप्पणी करना।
4: अभिषेक बैनर्जी जिससे मिलने गए थे वह कोई नशा करने वाला व्यक्ति था, उसकी समाज में एक अलग प्रकार की छवि थी जिसको लेकर समाज में आक्रोश था, वहाँ की महिलाओं में भयंकर आक्रोश था और वह आक्रोश फूट फूट कर निकल रहा था और वहाँ की महिलाओं ने अपना आक्रोश प्रकट करने के लिए अंडे फेंके, हालांकि जो कि कानूनी तौर पर ठीक नहीं, परंतु फिर भी ये समझना चाहिए कि इतने साल तक जो ये लोग भय वाली राजनीति चलाते रहे, आज समाज भय मुक्त है और अपना गुस्सा प्रकट कर रहा है।
5: And in a major counter-terrorism breakthrough, the Delhi Police Special Cell has arrested 8 suspected terrorists, effectively thwarting a series of coordinated strikes planned across national capital. Authorities confirmed that the captured operatives were preparing to target high security zones and law enforcement personnel. They had arrived to carry out terror attacks in major cities including Delhi and Mumbai. The arrested individuals hail from Delhi, Mumbai, Punjab, while some of them are Nepali nationals. Investigations reveal that the network operated under the direct influence of Pakistan's ISI in tandem with the Mumbai underworld. Police has also recovered substantial amount of arms, ammunition and explosives during the operation.
6: जब हमें पता चला कि ये टीम ऑलमोस्ट रेडी है तो कल हमने इनको इंटरसेप्ट किया जब ये अपने ठिकाने पर छतरपुर की तरफ जा रहे थे। इनके पास से 4 हैंड ग्रेनेड जिनको कि कल एनएसजी ने एक्सप्लोड करके डिसार्म किया, उसके बाद इनसे 2 वेपन और 25 पाकिस्तान मेड कार्ट्रिज मिले हैं जो ग्लॉक पिस्टल हैं। इनके निशाने पे मुंबई के कुछ इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन और कुछ ब्रिजेस की हमारे को वीडियोस मिली हैं, साथ ही में दिल्ली में कुछ सरकारी और गैर सरकारी भवन, इसके अलावा कुछ पब्लिक प्लेसेस के पॉइंट्स भी मिले हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स इनके पास से मिले हैं।
5: Well, we are slipping into a very short break. News and updates continue on the other side. Stay tuned.

0: पिछले 15 साल में उन लोगों को मालूम है, अभी जिस जनता को वो लोग घर से निकाल दिया गया, जिसको पीटा गया, मारा गया, जिस परिवार में बलात्कार हुआ था, वो लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो तो प्रशासन इसके ऊपर बात कर सकते हैं, पुलिस को देखना चाहिए, और तृणमूल कांग्रेस का कोई नैतिक या राजनीतिक अधिकार नहीं इसके ऊपर कोई टिप्पणी करना।
1: 121 लोगों का हत्यारा भारतीय जनता पार्टी कर्मी, लाखों घरों को उजाड़ने वाला, हजारों परिवार को बंगाल छोड़ने पर मजबूर करने वाला, करोड़ों की संख्या में लोगों पर मिथ्या मामला करने वाला अभिषेक बनर्जी, आज चोर चोर के स्लोगन के साथ सोनारपुर की जनता ने उसका स्वागत किया है, और वो जो आरोप लगा रहा है वो मिथ्या आरोप है। उसके ऊपर जनरोस जिसको कहा जाता है, जनरोस था, और वो झूठा आरोप लगा रहा है कि उसको मारने की साजिश थी। वहाँ जनता ने उस पर डीम और अंडा फेंक के उसका स्वागत किया है, और डीम और अंडा से किसी की हत्या नहीं होती।
2: हुआ है जो उनके ऊपर हुआ है गलत हुआ है। हम तो बार बार अपने कार्यकर्ता को भी बोले हैं, और हर वक्त हम लोग बोलते आए हैं, हमारे नेतृत्व भी बोलते आए हैं कि आईन को हाथ में मत लीजिए। अब जो लोग भी किए हैं उनको बोलेंगे ये गलत किए हैं, लेकिन आज जो हुआ है वो इसके जिम्मेदार अभिषेक बनर्जी है। 15 साल एक तरफ पुलिस और दूसरी तरफ जहांगीर शेख शाहजहां को लेकर जो अत्याचार, अभिषेक बनर्जी जो एरोगेंस, जो औद्धत्य, गाड़ी का बॉनेट में उठकर डीजे बजेगा 4 तारीख के बाद, आज गाली देना माननीय प्रधानमंत्री को, माननीय गृह मंत्री को, माननीय महामहिम राष्ट्रपति को, किसी को भी आप लोग छोड़े नहीं है।
3: बंगाल में जो तहजीब इन लोग के बनाए हैं, ये खुद तहजीब की शिकार बनते जा रहे हैं। ये पहले जो टीएमसी पार्टी करते थे गुंडागर्दी, वो आज बीजेपी पार्टी कर रही है। बात तो एक ही है, जिन्होंने आप कहते हैं ना सपेरे सांप के हाथ में मौत होती है, ये टीएमसी पार्टी के पुराने जो गुंडागर्दी बंगाल में होते हुए हम देखे हैं, उसका ही दौर अभी बंद नहीं हुई, चल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि सारे चीज बंद होना चाहिए। सियासत करने के अधिकार सबका है, पार्टी करने की, अपना बात रखने की अधिकार सबके है, ये आजाद है हम सब पार्टी, ये तहजीब बना के रखना चाहिए।
4: Let's now take you to Karnataka. Now, Karnataka will usher in a new political chapter on June 3rd, with D.K. Shivkumar set to sworn in as the new chief minister of the state. The formal election of D.K. Shivkumar as the Congress Legislative Party leader paved the way for the oath-taking ceremony, marking the beginning of a new administration in the state. After being elected as the CLP leader, D.K. Shivkumar met with the governor, in fact, to stake claim to form the government. Even as preparations gather pace for the swearing-in, attention will remain focused on the composition of the new cabinet. Key decisions on deputy chief ministers and ministerial berths are expected to reflect the party's regional and caste balancing strategy.
5: Smooth transition of power has been happened in Karnataka. Therefore, now onwards, under the leadership of D.K. Shivkumar, Congress is going to come back again with the support of Siddaramaiah ji. You take it from us, 2028, Congress is going to come back again in Karnataka with the support of all leaders.
4: On that note, we begin to a very short break. More news and updates on the other side. Stay with us.
6: Launch control, 0 to 100.
7: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
8: This car makes no sense, yet it makes every sense.
9: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
7: Your friend said, "Yeah, Lily." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.

0: आई कंडेम द इंसिडेंट, यही बीजेपी का कायदा है। ऊपर में वो लोग बोलते हैं हम शांति चाहते हैं, लेकिन नीचे उसको जो गुंडा लोग है बीजेपी में, लफंगा ये लोग है, उसको उश्का देते हैं, वही लोग करते हैं। पुलिस टाइम पर नहीं पहुंचता है। अभिषेक को भी हुआ, मैं अभिषेक को बधाई देने चाहता हूं कि वो फेस किया। तो ये लड़ाई चलेगा। यहां पर भी पोस्टपोल वायलेंस पे हमारे कर्मी पर हमला होगा, हम उसको रेजिस्ट करेंगे।
1: है वो बहुत बुरी तरह से जख्म है, तो पहले जो हॉस्पिटल में हम लोग ले गए थे तो एक खबर आ रहा है कोई इंस्ट्रक्शन का बात है, इंस्ट्रक्शन नहीं है उनको रखने का देखने का, इसलिए ये दूसरा हॉस्पिटल। हम लोग कोई हॉस्पिटल को कोई दोष नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये एलिगेशन आ रहा है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का एक सेक्शन से प्रेशर आ रहा है उनका ऊपर, ये लाइट करके दिखाना होगा, क्योंकि ये अभिषेक बैनर्जी का ऊपर जो प्लैंड कंस्पिरेसी वाइज हमला हुआ उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट लोग कंडेम कर रहे हैं, पूरा देश में हो गया है, पूरा वर्ल्ड पे हो गया है।
2: भारतीय जनता पार्टी का ये कोई कार्यक्रम में नहीं था। तृणमूल कांग्रेस का क्या वर्ताव था, क्या आचरण था उसका पिछले 15 साल में वो लोगों को मालूम है। अभी जिस जनता को वो लोग घर से निकाल दिया गया, जिसको पीटा गया, मारा गया, जिस परिवार में बलात्कार हुआ था, वो लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो तो प्रशासन इसके ऊपर बात कर सकते हैं, पुलिस को देखना चाहिए। और तृणमूल कांग्रेस का कोई नैतिक या राजनीतिक अधिकार नहीं इसके ऊपर कोई टिप्पणी करना।
3: 121 लोगों का हत्यारा भारतीय जनता पार्टी कर्मी, लाखों घरों को उजाड़ने वाला, हजारों परिवार को बंगाल छोड़ने पर मजबूर करने वाला, करोड़ों की संख्या में लोगों पर मिथ्या मामला करने वाला अभिषेक बनर्जी, आज चोर चोर के स्लोगन के साथ सोनारपुर की जनता ने उसका स्वागत किया है। और वो जो आरोप लगा रहा है वो मिथ्या आरोप है, उसके ऊपर जनरोस जिसको कहा जाता है जनरोस था, और वो झूठा आरोप लगा रहा है कि उसको मारने की साजिश थी। वहाँ जनता ने उस पर डीम और अंडा फेंक के उसका स्वागत किया है, और डीम और अंडा से किसी की हत्या नहीं होती।
4: देखिए, मुझे तो इस घटना के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, परंतु कोई भी ये समर्थन नहीं करेगा कि कानून कोई भी हाथ में ले या किसी भी प्रकार से किसी के ऊपर अंडे या हैकलिंग का काम करे। परंतु हम तो दिल्ली से हैं, तो दिल्ली में हमने देखा है कि कई बार कुछ लोगों की ऐसी भी प्रवृत्ति होती है कि वो स्वयं पे भी हमला करवाते हैं। हमने तो ऐसे नेता देखे, हमारे दिल्ली में बहुत सारे नेता पूर्व में जो मुख्यमंत्री रहे वो अपने आप पे ही हमला करवाते थे सिंपथी लेने के लिए। तो मैं नहीं कह रहा कि इस केस में ये है, अगर किसी के साथ किसी भी प्रकार की हैकलिंग या कोई अप्रिय घटना हुई है उसके बारे में उनको जाकर FIR करवानी चाहिए, पुलिस की कार्रवाई करवानी चाहिए।
5: बंगाल में जो तहजीब इन लोग के बनाए हैं ये खुद तहजीब की शिकार बनते जा रहे हैं। ये पहले जो TMC पार्टी करते थे गुंडागर्दी, वो आज BJP पार्टी कर रहे हैं। बात तो एक ही है, जिन्होंने आप कहते हैं ना सपेरे सांप के हाथ में मौत होती है, ये TMC पार्टी के पुराने जो गुंडागर्दी बंगाल में होते हुए हम देखे हैं उसका ही दौर अभी बंद नहीं हुई चल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि सारे चीज बंद होना चाहिए। सियासत करने के अधिकार सबका है, पार्टी करने की अपना बात रखने की अधिकार सबके है, ये आजाद है हम सब पार्टी, ये तहजीब बना के रखना चाहिए।
6: अभिषेक बनर्जी को सोचना चाहिए कितना ज्यादा घृणा तृणमूल का नेता लोग और अभिषेक बनर्जी का ऊपर बंगाल का जनता का है। ऐसा हालत ही होगा, चीफ मिनिस्टर गए कोर्ट में, सारे लोग चोर चोर करके चिल्ला रहे। आज भतीजे गए उसका हालत यही है। आगे चल के तो हमको लगता है ये लोग किसी जगह में जाने का लायक ही नहीं रहेगा। आज बंगाल में ऐसा हो रहा है, कल देश का जिस प्रांत भी जाएगा उसी प्रांत में जनता ऐसा करेगी।
7: With that, slipping into a very short break. More news and updates on the other side. Stay with us.

0: Joining us live is Mayo herself to talk about her journey. She joins me live from Mumbai. Let's talk to her more about her web series and her love for the language. Mayo, kaise hain aap?
1: Bahut badhiya, aap kaise hain?
0: I'm good, thank you. I can't help, Mayo, but start by asking you about your Hindi. I mean, you know, learning the language is tough for even people in India itself. What motivated you? Aapko kis cheez ne motivate kiya tha, Mayo, to invest so many years of your life in mastering the Hindi language?
1: जी, तो मेरे पापा वो हिमालय पर्वत में चढ़ते थे और इंडिया अक्सर आते रहते थे, और जब मैं कॉलेज में क्या पढ़ना है वो डिसाइड करते समय उन्होंने सजेस्ट किया था हिंदी सीखो, मज़ा आएगा। तो उस समय मुझे इंडिया के बारे में कुछ नहीं पता था, गई भी नहीं थी, पर मैंने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, मैं हिंदी सीख लूँगी। ऐसे करके मैंने 4 साल जापान के ओसाका विश्वविद्यालय में हिंदी की पढ़ाई है, हिंदी में बीए किया है, और फिर दिल्ली में भी 1 साल रहकर हिंदी की पढ़ाई कर रही थी।
0: You're extremely confident with the language. Kudos to you. Let's ask you more than Mayo. Indian culture के बारे में सबसे ज़्यादा क्या fascinate करता है Japanese audiences को? And before you answer that question, Mayo, what fascinates you most about the culture of India?
1: Yes, so मुझे इंडिया के जो दो लोग हैं बहुत फ्रेंडली है, बहुत हेल्पफुल है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इम्प्रेस करता है। जैसे पिछले 3-4 साल से मैं मुंबई आती रहती थी, अभी यहाँ मुंबई में घर रेंट पे लिया है, पर उससे पहले मैं हमेशा मुंबई के एक होस्ट फैमिली, एक इंडिया के परिवार में स्टे कर रही थी। मैंने अभी तक पैसे वगैरह कुछ नहीं दिया, हमेशा मेरी मदद करते थे मैं और ये परिवार, और मुझे रहने देते थे। तो इतना बड़ा दिल और क्रॉसनेस, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड इट रियली इंप्रेसेस मी।
0: Mayo, I'm very curious to know, given that you're so fluent with the Hindi language, has there ever been an incident where someone in India has taken you to be an Indian and not a Japanese national?
1: बहुत बहुत बार हुआ है। वैसे मैंने आज ऐसा कुर्ता पहना है और हिंदी में ऐसे बात कर दी है, तो लोगों को पता नहीं चलता कि वैसे नॉर्थ ईस्ट के एरिया में भी कुछ लोग के शक्कर ऐसे हैं जो मेरे से बहुत मिलते जुलते हैं, तो लोग पूछते हैं कि आप इंडिया में कहाँ से हैं। अरे मुझे मैं जब इंडिया से नहीं, मैं जापान से हूँ। और या तो लोगों को आश्चर्य होता है कि अच्छा, जापान से वो इतनी अच्छी हिंदी बोलती है, ऐसे बोलते भी है, और फिर कुछ लोग ऐसे हैं कि नहीं झूठ बोल रही हो ना, इंडिया में ही होगी, कहाँ से है? ऐसे पूछते भी हैं। तो मुझे बहुत मजा आता है ये।
0: I'm glad you're enjoying your time in India. A quick word also, Mayo, on your web series. It's set in Mumbai, which for many is very chaotic as a city, crowded, overwhelming, yet millions fall in love with it. What is the city's secret according to you, Mayo? Do you love the city? You're focusing on Mumbai. Tell us more.
1: Yes, so Mumbai, I really love Mumbai. मुझे मुंबई बहुत अच्छा लगता है, लोग भी बहुत अच्छे हैं, वैसे मैंने बोला था, एंड इट्स रियली अलग अलग तरीके के लोग मुंबई में रहते हैं, और सब, वैसे मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, आर्ट इंडस्ट्री में लोगों से ज़्यादा मिलती हूँ, तो बहुत लोग अच्छे हैं, क्रिएटिव है, पैशनेट है, तो मुंबई में रहकर ज़्यादा मुझे क्रिएटिविटी का फील हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है मुंबई, और खाना वड़ा पाव ये बहुत अच्छा लगता है।
0: You know, Mayo, we're talking about Mumbai. I want to understand from you, who's your favorite actor in Bollywood? Which is your favorite movie? Which is your favorite Hindi dialogue, perhaps?
1: Wow, शायद मैं ओम शांति ओम is something very
0: Shahrukh Khan
1: close to my heart. Shahrukh Khan और दीपिका पादुकोण. तो मैं एक dialogue सुनाऊंगी. एक चुटकी सिंदूर की कीमत. तुम क्या जानो रमेश बाबू?
0: Very well done. Very well done. You'll give a lot of actors a run for their money there, Mayo. But you also did say while we were presenting that report to our viewers that a lot of people from different cities in India come up to you. They request for photos with you. How do you handle that? How do you navigate through that?
1: इतना हैंडल करने की चीज भी नहीं है, मतलब लोग बहुत अच्छे हैं, फोटो के लिए बोलते हैं, बस फोटो खींचते हैं ऐसे। So it's very normal and friendly and nothing to, you know, difficult to handle kind of thing.
0: All right, and before I let you go, what's your favorite song from Bollywood? Sing a few lines for us, Mayo.
1: Glad again.
0: All right, but you know quite a few songs, you know movies as well. Mayo, thank you so much for joining us here on India Sense. We hope you keep coming back to India. We hope you keep covering the rich heritage and culture of our country. Thank you so much for being with us.
1: Thank you so much, and stay tuned for Moshi Moshi Mumbai on Mayo Japan channel. Thank you.
0: All right. On that note, we're going to be slipping into a short break here on India Sense. I'll be back with more.

0: सकता, पेशेंट आ नहीं सकता है, ये प्रॉब्लम
1: कहना है। यही जो हालत है,
0: इससे बदतर हालत है अंदर में, इससे बद ये क्या हालत है। चलिए अंदर में देखिए, रास्ता नहीं है जाने आने का, कोई पेशेंट अगर बीमार पड़ गया तो आने का अवस्था नहीं है, टीचर लाने का होता गिर जाता है लोग आज से नहीं।
1: कारण महिलाएं उतर कर इस पर विरोध प्रदर्शन किए थे।
0: हाँ, पूरा महिला ही सब आया था, विरोध प्रदर्शन किया यहाँ पे।
1: We need to understand one more thing, that what we know that there is a mama that Abhishek Banerjee was headed to a place where there are allegations that his party workers was killed. But we have some local data. जरा बताइए कि ये जिसके घर पे गए थे संजू, वो उसकी मौत किस तरीके से हुई थी?
2: हिंदी तो
1: की कोरे मारा गया चिलो।
2: वो की कोरे मारा गया? वो घरे पड़े गया चिलो। पड़े गये वो गन पायखाना पेचाप कोरे फैले चो।
1: वो की राजनैतिक हिंसार बोली हुई चिलो?
2: ঘটনা হয়েছিল আপনার প্রায় 15-16 দিন পরে, ওই যে পড়ে গেছে। আর ঘটনা ঘটেছে আপনার 6 তারিখে, ওকে দু ছাতাপুর মেরেছে 6 তারিখে। তো যদি কেউ দু ছাতাপুর মারে তাহলে হয়তো লোক মারা যায়, তো পড়ে গেছিল।
1: কোনো গন্ডগোল হয়েছিল?
2: দু এক ছাপুর ওকে ওদের লোকই ডেকে নিয়ে গেছিল, ওর বন্ধুরাই ডেকে নিয়ে গেছিল ওকে।
1: আপনার মনে হয় অসুস্থ হয়ে মারা গেছে?
2: হ্যাঁ, অসুস্থ পড়ে গেছিল, অসুস্থ হয়ে মারা গেছে।
1: দেয়ার ইজ সাম ভয়েসেস উই আর গেটিং অ্যামং দ্য লোকালস, দো দে ক্লেম that the TMC workers who was allegedly being killed, they said they had fallen ill, he had fallen ill, which is why he was undergoing treatment at a hospital, and after 1 week after he fallen ill, he succumbed to his illness. And now what we can see that locals are saying that in past 15 years the people over here in Sonarpur, they are facing lot of difficulties. They did not have offered any civic communities. The roads heading to this area are miserably bad, which is why the frustration, out of frustration, they protested in front of Abhishek Banerjee, but it has triggered a lot of politics.
3: Absolutely.
1: On the ground and nationwide. Back to you.
3: Of course, this has definitely triggered politics nationwide, and we're also seeing opposition parties jump into the fray to defend the TMC. So it remains to be seen what truly happens in this, but thank you so much, Ritik, for joining us and bringing those updates to us. Well, like my colleague was mentioning, that this has turned into a huge political flashpoint. In the latest flashpoint in West Bengal, TMC Member Parliament Abhishek Banerjee was attacked during his visit to Sonarpur on Saturday, where he had gone to meet the families of the post-poll violence victims. Abhishek Banerjee, the TMC Member Parliament from the Diamond Harbour constituency, has gone on to claim that eggs and stones were thrown at him during this very visit, while videos also showed protesters raising slogans of Chor Chor against him. Mamata Banerjee, who visited her nephew in the hospital, called the attack a pre-planned BJP conspiracy and alleged that hospitals and doctors were being pressured to deny him any treatment. The BJP, meanwhile, has hit back at Mamata Banerjee's allegations, saying that the incident reflected public anger against the TMC, insisting that the party had no role to play in the attack.
4: Pura recorded hai. Ab eeta mara hai, anda pheka hai, patharbaji kiya hai. Ye kya hai? Zara bataiye. मेरा आंख में ईटा मारा है, मैं आंख खोल नहीं पा रहा हूं। घुसा मारा है उसको, उसको लगा पीठ में, छाती में, हाथ में, पैर में। क्या हाल किया है? मैं एक हेलमेट पहन के जा रहा था, नहीं तो आज मेरा सर दो टुकड़ा हो जाता।
5: ने मेरे को फोन किया था, उन्होंने कहा दीदी कोई ममता जी कोई जरूरत है तो मेरे को बताया, तो मैं उसको हैदराबाद में ले जा सकते हैं और कोई भी जगह पे। ए राहुल जी मेरे को फोन पे बताया, ऑल द लीडर्स आर टॉकिंग एंड आई हैव सीन अखिलेश यादव, आई हैव सीन द ट्वीट ऑफ इंक्लूडिंग अमोर, इंक्लूडिंग अदर पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो,
6: कपिल सिब्बल
5: जी, ऑल
7: वेणुगोपाल
5: जी, ऑल दे हैव सेंड देयर ट्वीट्स, सो आई हैव सीन इट, बट आई एम टोल्ड, बट दैट टाइम आई वॉज नॉट इन ए मूड टू सी बिकॉज वी आर कंसर्न अबाउट हिज हेल्थ. And his health condition is not that good.
7: So, did they unko kahin?
5: They are threatening along with police administration to all the hospitals and the nursing home authority not to admit Abhishek Banerjee because they don't want that they should be treated. Now, doctors, they are sorry, though they advise. And as per their advice, he was admitted in ITU.
3: Well, like I mentioned earlier, also the incident of violence is

0: হচ্ছে ঔদ্ধত্য। গাড়ি কা বনেট মে উঠকর ডিজে বজেগা 4 তারিখ কে বাদ। আজ গালি দেনা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কো, মাননীয় গৃহমন্ত্রী কো, মাননীয় মহামহিম রাষ্ট্রপতি কো, কিসি কো ভি আপ লোক ছোড়ে নেই হ্যায়।
1: ভারতীয় জনতা পার্টি কা ইয়ে কোই কার্যক্রম মে নেই থা। তৃণমূল কংগ্রেস কা ক্যা বর্তাও থা, ক্যা আচরণ থা উসকা পিছলে 15 সাল মে ও লোগো কো মালুম হ্যায়। অভি জিস জনতা কো ও লোক ঘর সে নিকাল দিয়া গিয়া, জিসকো পিটা গিয়া, মারা গিয়া, জিস পরিবার মে বলাৎকার হুয়া থা, ও লোক ক্যা কর রহে নেই কর রহে ও তো প্রশাসন ইসকো উপর বাত কর সকতে হ্যায়, পুলিশ কো দেখনা চাহিয়ে। আর তৃণমূল কংগ্রেস কা কোই নৈতিক ইয়া রাজনৈতিক অধিকার নেই ইসকো উপর কোই টিপ্পনি করা।
2: অভিষেক ব্যানার্জি কো সোচনা চাহিয়ে কিতনা জাদা ঘৃণা তৃণমূল কা নেতা লোক আর অভিষেক ব্যানার্জি কা উপর বঙ্গাল কা জনতা কা হ্যায়। ऐसा हालत ही होगा, चीफ मिनिस्टर गए कोर्ट में, सारे लोग चोर चोर करके चिल्ला रहे। आज भतीजे गए उसका हालत यही है। आगे चल के तो हमको लगता है ये लोग किसी जगह में जाने का लायक ही नहीं रहेगा। आज बंगाल में ऐसा हो रहा है, कल देश का जिस प्रांत भी जाएगा उसी प्रांत में जनता ऐसा करेगी।
3: बंगाल में जो तहजीब इन लोग के बनाए हैं, ये वो खुद तहजीब की शिकार बनते जा रहे हैं। ये पहले जो टीएमसी पार्टी करते थे गुंडागर्दी, वो आज बीजेपी पार्टी कर रही है। बात तो एक ही है, जिन्होंने आप कहते हैं ना सपेरे सांप के हाथ में मौत होती है, ये टीएमसी पार्टी के पुराने जो गुंडागर्दी बंगाल में होते हुए हम देखे हैं, उसका ही दौर अभी बंद नहीं हुई, चल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि सारे चीज बंद होना चाहिए। सियासत करने के अधिकार सबका है, पार्टी करने की, अपना बात रखने की अधिकार सबके है, ये आजाद है हम सब पार्टी, ये तहजीब बना के रखना चाहिए।
4: Let's now take you to Karnataka. Now, Karnataka will usher into a new political chapter on June 3rd, with D.K. Shivkumar set to be sworn in as the chief minister. The formal election of D.K. Shivkumar as Congress Legislative Party leader paved the way for the oath-taking ceremony, marking the beginning of a new administration in the state. After being elected as the CLP leader, D.K. Shivkumar met with the governor alongside Siddaramaiah to stake claim to form the government. Even as preparations gather pace for the swearing-in, attention will still remain focused on the composition of the new cabinet. Key decisions on deputy chief ministers and ministerial berths are expected to reflect the party's regional as well as caste balancing strategy.
5: Congress High Command suggested the name of D.K. Shivakumar, deputy chief minister, as the leader of Congress Legislative Party. Siddaramaiah ji proposed the name of D.K. Shivkumar and Dr. Parameshwara seconded it. I would like to proudly announce that Karnataka Legislative Party unanimously elected D.K. Shivkumar as the leader of the Legislative Party of Karnataka Congress. Now he is going to the governor for taking claim as a chief minister, and is going to take oath as a chief minister along with his team on third evening.
4: We'll track more updates coming in on this story. With Karnataka's change of guard now complete, the spotlight is once again on the main man who's poised to take over as a chief minister. While D.K. Shivkumar is known as much for his political maneuvering as for his unmistakable personal style, designer scarves, luxury watches and a public image that makes no attempt to hide his wealth. And as he gets ready to occupy the state's top post, his carefully crafted brand is now back into the limelight. Take a look at the special report that breaks down all the details.

0: दिस वॉज बीजेपी सपोर्टर्स डूइंग दिस डिलिबरेटली।
1: गलत हुआ है जो उनके ऊपर हुआ है, गलत हुआ है। हम तो बार बार अपने कार्यकर्ता को भी

0: डीजे बजेगा 4 तारीख के बाद। आज गाली देना माननीय प्रधानमंत्री को, माननीय गृह मंत्री को, माननीय महामहिम राष्ट्रपति को, किसी को भी आप लोग छोड़े नहीं है।
1: भारतीय जनता पार्टी का ये कोई कार्यक्रम में नहीं था। तृणमूल कांग्रेस का क्या वर्ताव था, क्या आचरण था उसका पिछले 15 साल में, वो लोगों को मालूम है। अभी जिस जनता को वो लोग घर से निकाल दिया गया, जिसको पीटा गया, मारा गया, जिस परिवार में बलात्कार हुआ था, वो लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो तो प्रशासन इसके ऊपर बात कर सकते हैं, पुलिस को देखना चाहिए। और तृणमूल कांग्रेस का कोई नैतिक या राजनीतिक अधिकार नहीं इसके ऊपर कोई टिप्पणी करना।
2: 21 लोगों का हत्यारा भारतीय जनता पार्टी कर्मी, लाखों घरों को उजाड़ने वाला, हजारों परिवार को बंगाल छोड़ने पर मजबूर करने वाला, करोड़ों की संख्या में लोगों पर मिथ्या मामला करने वाला अभिषेक बनर्जी आज चोर चोर के स्लोगन के साथ सोनारपुर की जनता ने उसका स्वागत किया है। और वो जो आरोप लगा रहा है वो मिथ्या आरोप है, उसके ऊपर जनरोस जिसको कहा जाता है जनरोस था, और वो झूठा आरोप लगा रहा है कि उसको मारने की साजिश थी। वहाँ जनता ने उस पर डीम और अंडा फेंक के उसका स्वागत किया है, और डीम और अंडा से किसी की हत्या नहीं होती।
3: अभिषेक बनर्जी को सोचना चाहिए कितना ज्यादा घृणा तृणमूल का नेता लोग और अभिषेक बनर्जी का ऊपर बंगाल का जनता का है। ऐसा हालत ही होगा, चीफ मिनिस्टर गए कोर्ट में, सारे लोग चोर चोर करके चिल्ला रहे। आज भतीजे गए, उसका हालत यही है। आगे चल के तो हमको लगता है ये लोग किसी जगह में जाने का लायक ही नहीं रहेगा। आज बंगाल में ऐसा हो रहा है, कल देश का जिस प्रांत भी जाएगा उसी प्रांत में जनता ऐसा करेगी।
4: पिछले 15 साल से तृणमूल पश्चिम बंगाल में जो अत्याचार किया, आज उनका रिटर्न गिफ्ट मिला है उनको। कर्मा जानते हैं, कर्मा जो बोगे वही पाओगे। तो इतना संतराश, इतना थ्रेटनिंग, इतना डर उन्होंने बोया था, आज वहां के सामान्य जनता उनको वापस किए।
5: देखिए, मुझे तो इस घटना के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, परंतु कोई भी ये समर्थन नहीं करेगा कि कानून कोई भी हाथ में ले या किसी भी प्रकार से किसी के ऊपर अंडे या हैकलिंग का काम करे। परंतु हम तो दिल्ली से है, तो दिल्ली में हमने देखा है कि कई बार कुछ लोगों की ऐसी भी प्रवृत्ति होती है कि वो स्वयं पे भी हमला करवाते हैं। हमने तो ऐसे नेता देखे, हमारे दिल्ली में बहुत सारे नेता पूर्व में जो मुख्यमंत्री रहे वो अपने आप पे हमला करवाते थे सिंपथी लेने के लिए। तो मैं नहीं कह रहा कि इस केस में ये है, अगर किसी के साथ किसी भी प्रकार की हैकलिंग या कोई अप्रिय घटना हुई है उसके बारे में उनको जाकर FIR करवानी चाहिए, पुलिस की कार्रवाई करवानी चाहिए।
6: अभिषेक बनर्जी जिससे मिलने गए थे वह कोई नशा करने वाला व्यक्ति था, उसकी समाज में एक अलग प्रकार की छवि थी जिसको लेकर समाज में आक्रोश था, वहाँ की महिलाओं में भयंकर आक्रोश था, और वह आक्रोश फूट फूट कर निकल रहा था, और वहाँ की महिलाओं ने अपना आक्रोश प्रकट करने के लिए अंडे फेंके, हालांकि जो कि कानूनी तौर पर ठीक नहीं, परंतु फिर भी ये समझना चाहिए कि इतने साल तक जो ये लोग भय वाली राजनीति चलाते रहे, आज समाज भय मुक्त है और अपना गुस्सा प्रकट कर रहा है।
7: बंगाल में जो तहजीब इन लोग के बनाए हैं, ये खुद तहजीब की शिकार बनते जा रहे हैं। ये पहले जो TMC पार्टी करते थे गुंडागर्दी, वो आज BJP पार्टी कर रही है। बात तो एक ही है, जिन्होंने आप कहते हैं ना सपेरे सांप के हाथ में मौत होती है, ये TMC पार्टी के पुराने जो गुंडागर्दी बंगाल में होते हुए हम देखे हैं, उसका ही दौर अभी बंद नहीं हुई, चल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि सारे चीज बंद होना चाहिए। सियासत करने के अधिकार सबका है, पार्टी करने की, अपना बात रखने की अधिकार सबके है, ये आजाद है हम सब पार्टी, ये तहजीब बना के रखना चाहिए।
8: Let's now take you to Tamil Nadu, where we have some breaking news coming in for you at this hour. We're understanding that Tamil Nadu Chief Minister C. Rosa Vijay and Trisha have paid their respects to Ajit Kumar's mother, Mohini Mani, who passed away yesterday. Those are visuals of the Chief Minister right there on his screens at the moment. Remember that Trisha can also be seen on those visuals. They have paid the respects to Ajit Kumar, who essentially is an actor and of course a race driver. We're understanding that Ajit Kumar's mother,

0: मिलके, किसी ने मेरे बच्चे का गले हाथ पकड़े हैं, किसी ने गला पकड़ा है, किसी ने के साथ लड़कों ने मिलके किया है। तो सबका एनकाउंटर इसी तरह होना चाहिए और सबके घरों पर बिल्डोजर चलना चाहिए।
1: Well, let's now bring you updates coming in from the national capital. In a major breakthrough against terror network across India, the Delhi Police Special Cell has arrested 8 terror accused, while one person has also been detained. The Delhi Police's Special Cell said that the arrested accused are residents of Delhi, Mumbai and Punjab, and some of them are foreign nationals with alleged links to Pakistan's ISI and the Dawood Ibrahim gang. 3 terror accused have been arrested from Delhi's Mehrauli, Badarpur area, and a large, in fact, quantity of ammunition and weapons have also been recovered from their possession. It has also been alleged that the arrested accused were planning a major terror attack in Delhi's Lodhi Road, which has now been foiled.
2: जब हमें पता चला कि ये टीम ऑलमोस्ट रेडी है, तो कल हमने इनको इंटरसेप्ट किया जब ये अपने ठिकाने पर छतरपुर की तरफ जा रहे थे। इनके पास से 4 हैंड ग्रेनेड, जिनको कि कल एनएसजी ने एक्सप्लोड करके डिसार्म किया। उसके बाद इनसे 2 वेपन और 25 पाकिस्तान मेड कार्ट्रिज मिले हैं, जो ग्लॉक पिस्टल हैं। इनके निशाने पे मुंबई के कुछ इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन और कुछ ब्रिजेस की हमारे को वीडियोस मिली हैं। साथ ही में दिल्ली में कुछ सरकारी और गैर सरकारी भवन, इसके अलावा कुछ पब्लिक प्लेसेस के पॉइंट्स भी मिले हैं, जिनके कोऑर्डिनेट्स इनके पास से मिले हैं।
1: On that note, slipping into a very short break, more news and updates on the other side. Stay with us.

0: For generations, education in India was largely associated with stability. Secure marks, secure degrees, secure jobs. But our economy is changing rapidly. Increasingly, the country also needs problem solvers, innovators, people willing to build new ideas, rather than only seek existing opportunity.
1: Watch the full conversation only on NDTV.
2: नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्म इसलिए स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज.
3: The manner in which petrol and diesel prices are going up, and share with our viewers your insight.
4: Welcome back. My name is Reet Kaur Sahani. You're watching NDTV. Let's now take you through the world of sports. Olympian Vinesh Fogart launched a sharp attack on wrestling administrators in an interview with NDTV's Boria Majumdar, alleging that the system is trying to force her out of the sport. Vinesh said that she will only retire on her own terms. Listen in to this exclusive conversation.
5: There is one superstar in Indian wrestling or Olympic sport now, and that is Vinesh Fogart. Vinesh, system aapke khilaaf hai. क्लियरली बहुत सारे प्रतिबंध आपके खिलाफ लगाया जा रहा है, फिर भी आप लड़ाई कर रहे हो. हाउ डिफिकल्ट इज इट?
6: डिफिकल्ट तो आप पूछे मत. बड़ा मुश्किल है, और मेरा छोटा बेटा भी है, उसको भी मैनेज करना, और फिर हर दिन कुछ ना कुछ ये लोग, मतलब मैं उनको कोई भी ऐसे पूछता मीडिया में, मैं सबको एक ही बात बोलती कि मैट पे डिसाइड होने दीजिए आप. अब मैट से पहले आप मैट पे कदम नहीं रखने देंगे तो ये एक नाइंसाफी है. और मैं शुक्रगुजार तो मैं सुप्रीम कोर्ट की हूँ, दिल्ली हाई कोर्ट की हूँ, उन्होंने मेरे को चांस दिया. और एज ए मदर आई थिंक मुझे लगता है कि आने वाली जो भी वुमन रेसलर्स ये लगा लीजिए या वुमन एथलीट किसी भी स्पोर्ट्स में, सपोज कल कोर्ट के साथ में ये सब चीजें होंगी तो वो कोर्ट के सामने जाके ये बोल सकते हैं कि सर देखिए उनको एक फेयर चांस मिला था तो हमें भी दीजिए. और वो पॉलिसी में होना चाहिए. हम एज ए वुमन, हमें क्यों, हम एक एक नई जिंदगी को इस दुनिया में लेके आते हैं, उसके बाद में भी हमें उतना क्रेडिट भी नहीं मिलता है, फिर भी हम कॉम्पीट करना चाहते हैं. और ऐसे स्पोर्ट्स में जो बिल्कुल मेल डोमिनेट जिसको बोलते हैं, जिसमें पावर और स्टेमिना और सब कुछ लगता है, उसके बाद भी, और फिर उसके बाद में सिस्टम आपके बिल्कुल खिलाफ खड़ा हो जाता है. तो मैं ज्यादा सोचती नहीं हूँ, सोचने लग जाऊंगी तो शायद मेरे पे ज्यादा लोड आने लग जाएगा. तो मैं हर दिन कोशिश करती हूँ कि लेट गो, जितनी चीजें मैं काम ली हैंडल कर सकती हूँ मैं करूँ, और बस लड़ रहे हैं जितनी हिम्मत भगवान ने दी है, देखते हैं कितनी दी है, कितना क्या है. लेकिन एंड में जिंदगी में जब भी मैं रेसलिंग छोड़ू तो मेरे को ये रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि मैं आखिर तक मैं अपने गेम के लिए लड़ी नहीं, क्योंकि मेरे को कुश्ती से बहुत प्यार है और मैं कुश्ती में, मुझे पता है कि मेरे में पोटेंशियल है, मैं वो कर सकती हूँ देश के लिए, मैं और मेडल ला सकती हूँ, तो मैं कर रही हूँ. जिस दिन मुझे लगेगा कि नहीं मेरे में नहीं है तो मैं धन्यवाद बोल के कुश्ती को निकल जाऊंगी. पेरिस के बाद भी मैं इसलिए आई क्योंकि मुझे लग रहा था अभी भी है मेरे अंदर रेसलिंग, 2-3 साल में और अपना पीक कर सकती हूँ और मैं डेफिनेटली मैं ओलंपिक्स में मेडल जीत सकती हूँ. तो हम कर रहे हैं बस अपनी कोशिश.
5: इतना हौसला मिलता कहाँ से आपको? बच्चा है घर में, सोमवीर है सब, इतना आप पॉलिटिकल करियर में भी आप अच्छा कर रहे थे. पेरिस के बाद देखो, अगर आप ना भी रेसलिंग पे वापस आते, एक ही रेसलर ओलंपिक्स फाइनल पहुंचा है वो आप हो. आपको याद होगा सेमीफाइनल के बाद आप जब वेट के लिए जा रहे थे, मैं और शर्मिष्ठा वहां पे खड़ा था, वी कॉन्ग्रेचुलेटेड, गले मिले और आपने कहा कि कल इंटरव्यू करते हैं सर, वो सारी चीज याद है. इतना हौसला मिलता कहाँ से आपको, कहाँ से इतना स्ट्रेंथ मिल रहा है?
6: पता नहीं है तो जी, लेकिन अभी तो मेरा छोटा बेटा है तो सब जो भी आउटसाइड जो नॉइज है तो मैं उसके साथ में रह के उसको मैं ब्लॉक कर पा रही हूँ. बस खुश हो जाती हूँ उसको देख के, उसकी छोटी छोटी खुशियों में, कि ये इतनी छोटी छोटी खुशियों में खुश है तो हम इतनी बड़ी चीजों के ऊपर क्यों जाएं. हमें अभी मैं भी कोशिश करती हूँ कि मेरा बेटा अगर हंस रहा है, अगर वो मेरी क्लब बजाने पर हंस रहा है तो मैं भी सोचती हूँ कि मुझे भी उसी खुशी में शामिल होना है. बस बाहर क्या चल रहा है वो देख लेंगे. और एक एक पूरी टीम है, मैं डिनाई नहीं करूंगी, लेकिन लोगों का, देश के लोगों का जो प्यार है, आज भी मैं जब स्टेडियम में थी मैं देख रही थी लोग चीयर कर रहे थे, और रेसलिंग कम्युनिटी है, डर रहे थे रेसलिंग फेडरेशन के लोगों से, डर रहे थे मेरे को ओपनली बोलने के लिए, लेकिन मैं वॉशरूम में जा रही हूँ तब मेरे को बोल रहे हैं. मैच में बच्चों का वो होता ना कि एक सीनियर के लेके दीदी जीत जाए कैसे भी, वो प्यार निकल के आ रहा था, लेकिन वो बेचारे कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश कर रहे थे, वो दब नहीं पा रहा था, वो इतने एक्साइटेड हो रहे थे। सो ये भी एक मेरे लिए विन है कि आने वाली जनरेशन हमसे सीखे कि लड़ना है मैट पे, मैट के बाहर भी लड़ना, मैट के अंदर भी। और आप देखें कि इंडियन स्पोर्ट्स में, और मैं खासकर मैं ओलंपिक स्पोर्ट्स की बात कर रही हूँ, सिस्टम के बिना एथलीट है, सिस्टम के साथ में एथलीट नहीं है। जिस दिन सिस्टम साथ में खड़ा हो जाएगा, आई थिंक हमें कोई आ, आ, इतने 50-50 साल नहीं लग जाएंगे एक ओलंपिक गोल्ड जीतने के लिए। अभिनव बिंद्रा जी ने 2008 में जीता था, हमें कितने साल लग गए जब नीरज को गोल्ड जीता है। और वो सब उनका इंडिविजुअल मेहनत था, किसी सिस्टम ने उनका साथ नहीं दिया था, चाहे वो कोई भी खिलाड़ी है। तो सबके साथ में वही सिचुएशन है। बट मैं हर एक एथलीट को मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि हमें, अगर हमने इस गेम को, मैंने इस गेम को 20 साल से भी ज्यादा हो गए मेरे को इस गेम को देते हुए, मैंने अपना खून पसीना, मेरी फैमिली ने, सब लोगों ने इतना सब दिया है, तो इतनी आसानी से तो, और मैं रेसलिंग अपने अपनी शर्तों पे खत्म करना चाहती हूँ, ना कि किसी और के डर से या किसी और के। जिस दिन मेरे को लगेगा कि मैट पे नहीं इनफ हो रहा, मैं छोड़ दूंगी, लेकिन कोई मेरे को अगर जबरदस्ती बोलेगा कि नहीं रेसलिंग हम तुमको करने ही नहीं देंगे, तो वो मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है, मतलब।
4: Well, as IPL fever grips the country, online betting networks are also booming. From Telegram links and WhatsApp groups to real-time betting apps, illegal gambling is becoming increasingly sophisticated and harder to track. In this special report, my colleagues Bismain and Anushka uncover how these networks operate and why cracking down on them is becoming a growing challenge for the investigators. Let's also take a look at this special report.
7: The entry point for IPL online betting apps as well as platforms may be a Telegram channel, a WhatsApp message with one such link, as well as a phone call asking users to join such platforms. Now they come with one single promise, simple and easy money. They also lure new users with lucrative offers such as referral vouchers and sign-up bonuses.
8: Once installed, these apps mimic gaming platforms but operate like a betting exchange. Unlike in traditional betting, one used to wager on the match outcome, but these kind of apps allows you to micro bet. People can wager on each and every moment of the match, from the next wicket to the next over to the next boundary to the runs in one over. All of it people can bet on. Odds change over the time, over the hour, and that is how these apps encourage real-time betting constantly through the match.
7: Now, these online betting apps as well as platforms run through local bookie networks. Now, these agents are responsible not just for arranging for new recruits, but also managing deposits. They take commissions on the basis of sign-ups as well as on wins.
9: NDTV spoke to one person involved in online betting who explained how the system now operates through betting IDs and agents. Users first pay to create a betting ID, after which points equivalent to the deposited amount are credited to their account. If someone deposits rupees 1 lakh, they get points worth the same amount. He said that most bets are placed ball by ball during IPL matches, starting from as little as rupees 500. The odds change every ball on boundaries, sixes, wickets, or how many runs will come in the next over. He also stated that many such betting apps are easily available online, while agents act as intermediaries handling money transfers and user accounts. Most of these apps operate from abroad and settlements are usually calculated every Monday. He added, online makes it easier because that reduces the risk of getting caught.
10: He has a dedicated law preventing these kinds of online betting apps which tantamount to gambling. Nonetheless, most of these apps are located outside the territorial boundaries of the country and invariably do not comply with Indian law. So when the law enforcement agencies go ahead and want to investigate these apps, they often find that they are coming to a dead end. The reason for this is that most of these apps or service providers are located outside the territorial boundaries of the country.
9: As online IPL betting networks expand digitally, investigators are also attempting to intensify crackdowns. In a recent operation, Delhi Police's East District busted an IPL betting racket in Madhu Vihar, arresting three accused allegedly involved in real-time online betting during matches. Police said the accused were running the operations through online apps with multiple electronic devices seized during the raid. They were to place heavy bets during the Lucknow Super Giants and Punjab Kings matches.
7: How different is online betting now from what we have traditionally seen?
11: Traditionally, you would find the physical presence of people plus the physical presence of the money that is being gambled out. The premises used would be generally in the jurisdiction of the police stations concerned. However, with the changing times, with the coming of technology and the numerous online applications that are now available, the gambit has exceeded far much more, including the number of people that are getting involved in a single app for gambling, as well as the money that is getting in.
7: Earlier this week, you know, cracked a very important case here in East District, and you know, you have achieved considerable success with this case. Please share with us how the investigation into this particular matter unfolded.
11: Yes, we were successful in conducting a raid on a gambling racket being conducted here in the area of Madhu Vihar on the date of 23rd and 24th. And from the spot, humne digital equipments bhi seized kiye hain, including laptops and mobiles. And we have apprehended three persons in this racket. And further investigation into the case is being carried out.
8: Flashy interfaces and jackpot claims lies an addiction problem. People generally start with betting small during IPL matches, and over time, when they get into escalating losses and into debt cycle, they try to earn more and further get into repeat gambling, losing more money.
7: As the IPL season kicked in and continues, online betting and gambling networks also continue to operate in the shadows of the tournament. Now, despite crackdown, these online betting networks continue to operate digitally through cloned applications, instant payment apps, as well as through encrypted channels, raising several questions on enforcement and how new users are lured in to join these platforms. With camera person Aman, this is Bismi Taskin.
8: With camera person Aman, this is Anushka Garg for NETV.
4: Well, Paris celebrations turned violent after the Paris Saint-Germain clinched the UEFA Champions League win, with police detaining 45 people amid the clashes and unrest in the city. What began as jubilation quickly escalated into chaos in several areas of the French capital, forcing authorities to intervene and restore order. Police say multiple fans were taken into custody as security forces moved in to contain the situation following the high-profile victory.

0: पूरा रिकॉर्डेड है। आप ईटा मारा है, अंडा फेंका है, पत्थरबाजी किया है, ये क्या है जरा बताइए। मेरा आंख में ईटा मारा है, मैं आंख खोल नहीं पा रहा हूं। भूसा मारा है उसको, उसको लगा पीठ में, छाती में, हाथ में, पैर में, क्या हाल किया है। मैं एक हेलमेट पहन के जा रहा था, नहीं तो आज मेरा सर दो टुकड़ा हो जाता।
1: फोन किया था, उन्होंने कहा दीदी कोई ममता जी कोई जरूरत है तो मेरे को बताया बता तो मैं उसको हैदराबाद में ले जा सकता है और कोई भी जगह पे। ए राहुल जी मेरे को फोन पे बताया, ऑल द लीडर्स आर टॉकिंग एंड आई हैव सीन अखिलेश यादव, आई हैव सीन द ट्वीट ऑफ इंक्लूडिंग अमोर, इंक्लूडिंग अदर पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो, कपिल सिब्बल जी, ऑल वेणुगोपाल जी, ऑल दे हैव सीन देयर ट्वीट्स, सो आई हैव सीन इट, बट आई एम टोल्ड, बट दैट टाइम आई वॉज नॉट इन ए मूड टू सी बिकॉज वी आर कंसर्न अबाउट हिज हेल्थ एंड हिज हेल्थ कंडीशन इज नॉट दैट गुड।
2: तो दी क्या उनको कहीं
1: They are threatening along with police administration to all the hospitals and the nursing home authority not to admit Abhishek Banerjee because they don't want that they should be treated. Now doctors, they are sorry, though they advise and as per their advice, he was admitted.
3: And then we have reactions coming about. These are opposition leaders from across the country. This is from the India bloc particularly that has strongly condemned the attack on Abhishek Banerjee, calling it a serious assault on democratic politics. Congress MP Rahul Gandhi termed the incident unacceptable and alleged a deliberate lack of police protection, saying law and order in West Bengal is beyond control. Akhilesh Yadav has also condemned the attack, calling it an example of BJP's politics of violence and of hate. BJP has rejected all allegations of involvement, while its Bengal's minister Agni Mitra Paul condemning the attack but saying that Abhishek Banerjee's own politics and remarks have triggered that public anger. She claimed that the BJP had no role in the incident, argued the confrontation reflected growing public resentment against the TMC leader rather than any organized political conspiracy.
4: हुआ है वो बहुत बुरी तरह से जख्म है, तो पहले जो हॉस्पिटल में हम लोग ले गए थे तो एक खबर आ रहा है कोई इंस्ट्रक्शन का बात है, इंस्ट्रक्शन नहीं है उनको रखने का देखने का, तो इसलिए ये दूसरा हॉस्पिटल, हम लोग कोई हॉस्पिटल को कोई दोष नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये एलिगेशन आ रहा है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का एक सेक्शन से प्रेशर आ रहा है उनका ऊपर, ये लाइट करके दिखाना होगा क्योंकि ये अभिषेक बैनर्जी का ऊपर जो प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी वाइज हमला हुआ उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट लोग कंडेम कर रहे हैं, पूरा देश में हो गया है, पूरा वर्ल्ड पे हो गया है।
5: जो हुआ है अभिषेक के साथ वो नहीं होना चाहिए था। कानून किसी को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन पिछले 15 साल से जनता ने जो भुगत रही थी, एक एक व्यक्ति को सताया गया है, किसी को नहीं छोड़ा, सबका अधिकार को हरण किया गया है। कानून व्यवस्था नहीं, कुछ सुविधा नहीं, बस रूटता रोड बंद कर दिया घर के सामने से 10 साल से, ब्रिगेड लगा दिया गया, किसने अधिकार दिया। तो जनता की जो रोष है वो तो कहीं ना कहीं आना चाहिए, जनता कितना खपा हुआ है देखिए फलता इलेक्शन में, अब टीएमसी को फोर्थ पोजिशन मिला है, इसी को देख के समझ जाना चाहिए काहे रिस्क ले रहे हैं, हीरो बनने क्यों जाते हो भाई, जो जिंदगी में नहीं किया।
6: गलत हुआ है जो उनके ऊपर हुआ है, गलत हुआ है। हम तो बार बार अपने कार्यकर्ता को भी बोले हैं और हर वक्त हम लोग बोलते आए हैं, हमारे नेतृत्व भी बोलते आए हैं कि आईन को हाथ में मत लीजिए। अब जो लोग भी किए हैं उनको बोलेंगे ये गलत किए हैं, लेकिन आज जो हुआ है वो इसके जिम्मेदार अभिषेक बैनर्जी है। 15 साल एक तरफ पुलिस और दूसरी तरफ जहांगीर शेख शाहजहां को लेकर जो अत्याचार अभिषेक बैनर्जी, जो एरोगेंस, जो औद्धत्य, गाड़ी का बॉनेट में उठकर डीजे बजेगा 4 तारीख के बाद, आज गाली देना माननीय प्रधानमंत्री को, माननीय गृहमंत्री को, माननीय महामहिम राष्ट्रपति को, किसी को भी आप लोग छोड़े नहीं है।
7: 121 लोगों का हत्यारा भारतीय जनता पार्टी कर्मी, लाखों घरों को जाड़ने

0: फेंक के उसका स्वागत किया है और डीम और अंडा से किसी की हत्या नहीं होती।
1: वो बीजेपी हमारा 4 तारीख को सरकार में नहीं होते तो 5,000 युवा का होता हो जाते। हमारा नॉर्थ बंगाल में महिला का सम्मान नहीं रहते, वो किसके बात बोलते हैं? वो तो खुद चोर है, खुद डाकू है, खुद दुष्कृति है, टेररिस्ट है अभिषेक बंदोपाध्याय। उसको ऐसे बात नहीं है, वो अच्छा भी है। वो तो सबसे डीजे बाजने के बात बोल रहा था, उसका डीजे नहीं बाजा, उसने भारतीय जनता पार्टी युवा वर्कर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसका गोबर जल फेंकना चाहिए था।
2: पिछले 15 साल से तृणमूल पश्चिम बंगाल में जो अत्याचार किया, आज उनका रिटर्न गिफ्ट मिला है उनको। कर्मा जानते हैं, कर्मा जो बोगे वही पाओगे। तो इतना संतराश, इतना थ्रेटनिंग, इतना डर उन्होंने बोया था, आज वहां के सामान्य जनता उनको वापस किए।
3: बंगाल में जो तहजीबी लोग बनाए हैं, ये वो खुद तहजीब की शिकार बनते जा रहे हैं। ये पहले जो टीएमसी पार्टी करते थे गुंडागर्दी, वो आज बीजेपी पार्टी कर रहे हैं। बात तो एक ही है, जिन्होंने आप कहते हैं ना सपेरे सांप के हाथ में मौत होती है, ये टीएमसी पार्टी के पुराने जो गुंडागर्दी बंगाल में होते हुए हम देखे हैं, उसका ही दौर अभी बंद नहीं हुई, चल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि सारे चीज बंद होना चाहिए। सियासत करने के अधिकार सबका है, पार्टी करने की, अपना बात रखने की अधिकार सबके है, ये आजाद है हम सब पार्टी, ये तहजीब बना के रखना चाहिए।
4: Switching tracks now to the Chief of Defence Staff, General N.S. Raja Subramani, who has formally taken charge and was accorded a guard of honour at the South Block lawns in New Delhi. The ceremony marked his assumption of office, with senior military officials in attendance as he steps into the country's top defence leadership role, overseeing the integrated command structure of the armed forces. With that, it's a wrap. We leave you with these images.

0: Joining us live is Mayo herself to talk about her journey. She joins me live from Mumbai. Let's talk to her more about her web series and her love for the language. Mayo, kaise hain aap?
1: Bahut badhiya, aap kaise hain?
0: I'm good, thank you. I can't help, Mayo, but start by asking you about your Hindi. I mean, you know, learning the language is tough for even people in India itself. What motivated you? Aapko kis cheez ne motivate kiya tha, Mayo, to invest so many years of your life in mastering the Hindi language?
1: जी, तो मेरे पापा वो हिमालय पर्वत में चढ़ते थे और इंडिया अक्सर आते रहते थे, और जब मैं कॉलेज में क्या पढ़ना है वो डिसाइड करते समय उन्होंने सजेस्ट किया था हिंदी सीखो, मज़ा आएगा। तो उस समय मुझे इंडिया के बारे में कुछ नहीं पता था, गई भी नहीं थी, पर मैंने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, मैं हिंदी सीख लूँगी। ऐसे करके मैंने 4 साल जापान के ओसाका विश्वविद्यालय में हिंदी की पढ़ाई है, हिंदी में बीए किया है, और फिर दिल्ली में भी 1 साल रहकर हिंदी की पढ़ाई कर रही थी।
0: You're extremely confident with the language. Kudos to you. Let's ask you more than Mayo. Indian culture के बारे में सबसे ज़्यादा क्या fascinate करता है Japanese audiences को? And before you answer that question, Mayo, what fascinates you most about the culture of India?
1: Yes. So मुझे इंडिया के जो दो लोग हैं बहुत फ्रेंडली है, बहुत हेल्पफुल है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इम्प्रेस करता है। जैसे पिछले 3-4 साल से मैं मुंबई आती रहती थी, अभी यहाँ मुंबई में घर रेंट पे लिया है, पर उससे पहले मैं हमेशा मुंबई के एक होस्ट फैमिली, एक इंडिया के परिवार में स्टे कर रही थी। मैंने अभी तक पैसे वगैरह कुछ नहीं दिया, हमेशा मेरी मदद करते थे मैं और ये परिवार, और मुझे रहने देते थे। तो इतना बड़ा दिल और क्रॉसनेस, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड इट रियली इम्प्रेसेस मी।
0: Mayo, I'm very curious to know, given that you're so fluent with the Hindi language, has there ever been an incident where someone in India has taken you to be an Indian and not a Japanese national?
1: बहुत बहुत बार हुआ है। वैसे मैंने आज ऐसा कुर्ता पहना है और हिंदी में ऐसे बात कर दी है, तो लोगों को पता नहीं चलता कि वैसे नॉर्थ ईस्ट के एरिया में भी कुछ लोग के शक्कर ऐसे हैं जो मेरे से बहुत मिलते जुलते हैं, तो लोग पूछते हैं कि आप इंडिया में कहाँ से हैं। अरे मुझे मैं जब इंडिया से नहीं, मैं जापान से हूँ। और

0: या तो लोगों को आश्चर्य होता है कि अच्छा जापान से वो इतनी अच्छी हिंदी बोलती है, ऐसे बोलते भी है, और फिर कुछ लोग ऐसे हैं कि नहीं, झूठ बोल रही हो ना, इंडिया में ही होगी, कहाँ से है? ऐसे पूछते भी हैं। तो मुझे बहुत मजा आता है ये
1: I'm
0: कॉन्वर्सेशन
1: glad you're
0: से।
1: enjoying your time in India. A quick word also, Mayo, on your web series. It's set in Mumbai, which for many is very chaotic as a city, crowded, overwhelming, yet millions fall in love with it. What is the city's secret according to you, Mayo? Do you love the city? You're focusing on Mumbai. Tell us more.
0: यस, सो मुंबई, आई रियली लव मुंबई। मुझे मुंबई बहुत अच्छा लगता है, लोग भी बहुत अच्छे हैं, वैसे मैंने बोला था। एंड इट्स रियली अलग अलग तरीके के लोग मुंबई में रहते हैं, और सब, वैसे मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, आर्ट इंडस्ट्री में लोगों से ज़्यादा मिलती हूँ, तो बहुत लोग अच्छे हैं, क्रिएटिव है, पैशनेट है, तो मुंबई में रहकर ज़्यादा मुझे क्रिएटिविटी का फील हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है मुंबई, और खाना वड़ा पाव ये सब भी
1: वड़ा
0: बहुत अच्छा
1: पाव.
0: लगता है।
1: यू नो माई, वी आर टॉकिंग अबाउट मुंबई. आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू, हु इज़ योर फेवरेट एक्टर इन बॉलीवुड? विच इज़ योर फेवरेट मूवी? विच इज़ योर फेवरेट हिंदी डायलॉग परहैप्स?
0: वाह, शायद मैं ओम शांति ओम इज समथिंग
1: शाहरुख
0: वेरी
1: खान.
0: क्लोज टू माय हार्ट, शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण। तो मैं एक डायलॉग सुनाऊंगी। एक चुटकी सिंदूर की कीमत, तुम क्या जानो रमेश बाबू,
1: वेरी वेल
0: आशीर्वाद
1: डन,
0: होता है एक चुटकी
1: वेरी वेल डन. यू विल गिव अ
0: सिंदूर।
1: लॉट ऑफ एक्टर्स अ रन फॉर देयर मनी देयर मायो. बट यू ऑल्सो डिड से व्हाइल वी वर प्रेजेंटिंग दैट रिपोर्ट टू आवर व्यूअर्स दैट अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट सिटीज इन इंडिया कम अप टू यू, दे रिक्वेस्ट फॉर फोटोज विद यू. हाउ डू यू हैंडल दैट? हाउ डू यू नेविगेट थ्रू दैट?
0: इतना हैंडल करने की चीज भी नहीं है, मतलब लोग बहुत अच्छे हैं, फोटो के लिए बोलते हैं, बस फोटो खींचते हैं ऐसे, तो इट्स वेरी नॉर्मल एंड फ्रेंडली एंड नथिंग टू यू नो डिफिकल्ट टू हैंडल काइंड ऑफ थिंग।
1: All right, and before I let you go, what's your favorite song from Bollywood? Sing a few lines for us, Mayo.
0: गुलाबी आंखें, नहीं, मुझे गाना नहीं आता है,
1: All
0: प्लीज रहने दीजिए, मुझे ना गाना नहीं आता है।
1: right, but you know quite a few songs, you know movies as well. Mayo, thank you so much for joining us here on India Sense. We hope you keep coming
0: Thank you.
1: back to India. We hope you keep covering the rich heritage and culture of our country. Thank you so much for being with us.
0: Thank you so much, and stay tuned for Moshi Moshi Mumbai on Mayo Japan channel. Thank you.
1: All right, on that note, we're going to be slipping into a short break here on India Sense. I'll be back with more.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: Where the software engineer meets the talented photographer to create the big dream, the world comes together at Sharda University.
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे राजा।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आपसे जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के लोग देश हित में, समाज हित में ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे हैं, और जब उनके विषय में सुनते हैं तो हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। आज कार्यक्रम की शुरुआत मैं एथलेटिक्स में देश की ऐसी ही उपलब्धि का, कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, एक इवेंट जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़। महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। जिन 2 एथलीट्स ने यह कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर। मैंने सोचा इस बार मन की बात में इन दोनों खिलाड़ियों से बात की जाए। अनिमेश जी नमस्कार, गुरिंदर वीर आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल।
1: नमस्कार सर। नमस्कार।
2: नमस्कार सर।
0: अच्छा भैया, आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में जुगलबंदी होती है कि एक बार एक चुनौती दे फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले फिर तीसरी बार कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका। मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले।
1: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ, एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया, एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ, मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ, एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था, एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले। तो जब कोविड खत्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया, एंड मुझे पता नहीं था कि वहाँ से नेशनल का सिलेक्शन है, एंड मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
0: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
3: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ, और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे, तो हमारे इंडिया का कल्चर है जब भी कोई त्यौहार होता है जैसे दिवाली जैसे नया साल, तो हम अपने घर की सफाई करते हैं, तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था, तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत खुश होता था। तो जब मैं कोई ट्रॉफी साफ करता था तो मैं पूछता था अभी ये ट्रॉफी कहाँ जीती, ये मेडल कहाँ जीता, ये फोटो कब की है, तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे भी मैं यहाँ खेलने गया, मैंने ये नेशनल मेडल जीता, ये मैंने अपनी टीम को इतना जिताया। तो फिर मैं भी उनको बोलता था अभी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है। वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में, तो मैं उनको बोलने लगा अभी मेरे को भी लेके जाया करो अपने साथ, तो मेरे को लेके जाने लगे जो उन्होंने अपनी गेम स्पोर्ट्स में सीखा था, तो मेरे को सिखाने लगे, तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा, तो एक स्टोरी ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरे लिए टीवी बंद कर दिया, अभी अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया आप पढ़ो, तो मैं कभी ठीक है आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते, एक

0: दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे भी, देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है। तो मेरे को भी खुशी होती है जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ता हुआ देखती है। हाँ
1: वाह वाह, बड़े शानदार बात है भी आपकी तो।
0: जी, मिडिल क्लास फैमिली है सर। फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे, घर की प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स छोड़ दी। उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया, तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना देखा भी, मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा। तो मैं उनसे बातें करता था, फिर सुनता था मिल्खा सिंह इतनी मेहनत करते थे, मैं उनको बोलता था मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा। तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मिल्खा सिंह जी खून की उल्टियां करते थे, धूप में भागते थे, सारा सारा दिन ट्रेनिंग करते थे। तो वो चीजें मेरे को इंस्पायर करती थी, मेरे फादर मेरे को इंस्पायर करते थे कि मैं भागूंगा अपने देश के लिए मेडल लाऊं, जीतूं। और ये भी था भी जब मैंने इवेंट चूज किया 100 मीटर, सभी मेरे को बोलते थे भी 100 मत करो, 100 इंडियंस का इवेंट नहीं है, इंडियंस की बॉडी 100 मीटर के लिए बनी ही नहीं है। तो मैं और मेरे फादर हमेशा बोलते थे भी गुरिंदर हमने ये चूज किया है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, जो हमें बोलते हैं अभी हम नहीं कर सकते, हम उसको करके दिखाएंगे और तू करके दिखाएगा, मुझे तेरे पे भरोसा है। तो वो भरोसा जब मेरे को मेरे फादर ने मेरे पे किया, तो मैं उस भरोसे को अपनी हिम्मत बना के मैं चला, और मैं आज हर इंडियन बोलता है भी इंडियन स्प्रिंट कर।
1: देखिए, आप दोनों ने बहुत बड़ा कमाल किया है और सिर्फ 2 दिनों के भीतर आप दोनों ने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है 100 मीटर रेस में दौड़ना। और जैसा गुरिंदर वीर जी ने कहा कि लोग कहते हैं कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं, इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया, तो ये दोनों से मैं जानना चाहूंगा और मन की बात के श्रोता भी सुनना चाहेंगे कि कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है।
0: जी सर, मैं गुरिंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी, तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी कोई नहीं, एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया, तो इससे जिंदगी खराब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते। तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया, अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं, तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता।
1: अनिमेश जी,
2: सर, मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स, तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है, तू कर पाएगा कि नहीं। तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूँ तो करूंगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है, बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना, एंड देखो सारी फैसिलिटीज सब चीज़ हम लोग सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, सब चीज़ हम लोग करेंगे, बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं। क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो sub-10 या sub-10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई कोई स्प्रिंट कर सकता है, बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूफ किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेट करती है, एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज़ दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं, एंड हम और करेंगे सर अभी। एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है, तो वहाँ अपकमिंग कॉम्पिटिशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
1: अच्छा देखिए, मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा। मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं। आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले अनिमेश बता दे।
2: सर जी, पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था, एंड देन उसको गुरिंदर वीरभिया ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ, तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, तो आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा। क्योंकि उस समय कॉम्पिटिशन में राइवलरी रहती है, बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही कि उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कंपटीशन करने के लिए, तो वहाँ भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहाँ भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है, एंड हमारे हाथों में है वो चीज़, हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा।
1: गुरिंदर वीर क्या कहना चाहेंगे?
0: हम दोनों ने डिसाइड किया था भी हम दोनों अच्छा भागेंगे। तो कभी भी सर एक दूसरे को जरूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया फिर एनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप

0: रहे थे, तो मैं अनिमेश को बता रहा था अभी, अनिमेश वो ब्लॉक सही है, उस पे जाके बैठ, वहां पे स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, जब तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है, हम भी इम्प्रूव करते हैं। तो दोस्ती भी चाहिए सर, बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं, कंपटीशन के बाहर हैं, तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। तो ये होता भी, मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा।
1: देखिए, आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना, वो देश का मान बढ़ाने के लिए की है, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है, और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है। और मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है, और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है, और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है, ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।
0: शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका सर।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है, तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। साथियों, हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है, आपने भी देखा होगा, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है, कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं, और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं, अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी, राजस्थान और गुजरात में छाछ, जैसे हर खाने की साथी बन जाती है। और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम, और ओडिशा में बेलपना। वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है, और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है, हमारे खेत खलिहान से निकली है, कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है, और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है, उत्तर प्रदेश का दशहरी, और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जरदालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की

बच्चे भी आते हो, युवा भी और बुजुर्ग भी, जहां कोई फीस न हो, कोई बड़ी बिल्डिंग न हो, कोई क्लासरूम भी न हो, और सबसे रोचक बात वहां क्लास नदी में लगती हो। साथियों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। इस प्रयास के पीछे एक पीड़ा भी छिपी है। कुछ वर्ष पहले एक नौका हादसे में कई छात्रों की मृत्यु हो गई थी। उस घटना ने साजी जी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, अगर बच्चों को तैरना आता होता तो शायद कई जानें बच जाती। बस यहीं से शुरू हुआ उनका ये अभियान। साथियों, साजी वला शेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। साथियों, इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है, इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहां 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथियों, हम भारतीयों में खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को लेकर हमेशा विशेष आकर्षण रहा है। हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद है। यहां अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई है। नेविगेशन हो,

पंचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। हमारे यहाँ एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में कौतूहल जगाया है, उसे एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित किया है और आज के युवाओं में भी इसे लेकर काफी उत्साह दिखाई देता है। आजकल आप भी देखते होंगे देश भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक इनकी गतिविधियां दिखाई देती हैं। मुझे बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली। यहां ऑब्जर्वेशनल सेशंस आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने का मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नाम की टीम ने 30 घंटे का एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया है। साथियों, रात में तारों को निहारना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहाँ युवा साथी टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। यहाँ ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ बुक्स लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सुविधा भी है। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि वे किसी एस्ट्रोनॉमी क्लब से जरूर जुड़े और इन छुट्टियों में किसी प्लेनेटेरियम को भी जरूर देखने जाएं। साथियों, मन की बात कार्यक्रम को जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा एक वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा। इसमें कुछ लोग बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की। ये घटना उत्तर प्रदेश की है। वहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। साथियों, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है।

0: 39 on Harding Road. Now, however, the move has triggered a political slugfest, with the Bihar Deputy Chief Minister calling out Rabri Devi to follow the rules set by the government. JDU leaders also went on to slam Rabri Devi, asking her to lead by example and not cling to a government bungalow. With this, the RJD has rallied behind Rabri Devi, alleging that the action was politically motivated and is being aimed at targeting its senior leaders.
1: से लोग हैं, माननीय सांसद है, विधायक हैं, इन दोनों कैटेगरी से अलग के भी लोग हैं जिनके पास अनाधिकृत मकान है, जो लोकसभा में चले गए हैं जीत करके और बिहार विधान परिषद के सभापति रह चुके हैं, उनके जिम्मे अलग मकान है। मकान का जो आवंटन है वो नियम के अनुसार नहीं चल रहा है। मंत्रियों के मकान आवंटित करनांकित नहीं है, उस आधार पर नहीं होता है। तो मंत्री को तो आप कहीं भी दे सकते हैं, तो बदनाम करने के लिए शेड्यूल कास्ट के मिनिस्टर को यहाँ रखा है। तो ये जानबूझ करके प्रताड़ित करने के लिए, अपमानित करने के लिए सरकार ने एक रास्ता चुना है।
2: इसमें जो नियम कानून कहता है वही होता है और सब लोगों को नियम का पालन करना।
3: जो कानून कहता है उस सवाल पर कोई हठधर्मिता नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि विपक्ष के नेता हैं। आपका जो आचरण होगा वह आपके विधायकों के लिए अनुसरण करने लायक होगा। और जब इसकी प्रक्रिया है, वैकल्पिक मकान उपलब्ध करा दिया गया है, तब हम समझते हैं हठधर्मिता नहीं करनी चाहिए। अरे वो तो प्रक्रिया है ना, वो तो बायलॉज बना हुआ है इसके लिए। तीन नोटिस पहले गया, ऐसा ही थोड़ी है कि जब मर्जी करेगा आप किसी का मकान में एंट्री करा दीजिए, कब खाली करा दीजिएगा। इसलिए कि सवाल इस बात का है कि सरकारी संपत्ति पर निगाह नहीं रखनी चाहिए।
4: पहले भी विधि सम्मत विभाग से नोटिस जारी किया गया था खाली करने का, चूंकि किन्हीं के नाम से आवंटन नहीं था। और अभी फिर से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, नए मंत्री भी बने हैं, तो माननीय मंत्री नंदकिशोर राम जी के नाम से 10 सर्कुलर रोड आवास जो है वो उनको आवंटित हुआ है। तब कायदे से विधि सम्मत विभाग ने नोटिस जारी किया है, अब माननीय मंत्रीगण को भी तो आवास चाहिए, तो ये स्वाभाविक है कायदे से अब खाली भी हो जाना चाहिए। पहले तो आवंटित नहीं था किन्हीं के नाम से, लेकिन अब वहाँ भी 39 हार्डिंग रोड भी बन के तैयार है और अब माननीय मंत्री नंदकिशोर राम जी के नाम से हो गया है, तो अब उसी के सिलसिले में विभाग ने विधि सम्मत नोटिस निकाला है खाली।
5: देखिए, सरकार ने नियम बनाया है और सबको नियम का पालन करना चाहिए और खास जनप्रतिनिधि तो निश्चित तौर पर सरकार की नीति के तहत हर माननीय को चलना चाहिए, ताकि जिन जो उसके मैंने जो उसके कैटेगरी में आते हैं मतलब उनको रहना चाहिए जा करके। तो पहले जब थे तो सरकार में थे तो रह रहे थे, उसके बाद भी रह रहे थे, तो सरकार का नियम के आलोक में हो रहा है तो सरकार को सहयोग करना चाहिए।
6: Once again, Bangla politics is erupted in Bihar, and right now we are standing outside the 10 circular bungalow in Patna, and this is the bungalow where the Lalu family is living for the last 21 years. And the newly Bihar government instructed and advised and issued a notice, a fresh notice to Rabri Devi to vacate this bungalow and shift it to the 39 Harding Road, which is the new bungalow that is allocated to the leader of opposition Rabri Devi. And we are reporting from the 10 circular bungalow in Patna, and this is called once time a power center of Bihar politics. As you can see, a big lalten which is the symbol of RJD, you can see at the top of the gate of the 10 circular road, and you can see here the name of Srimati Rabri Devi, Purv Mukhya Mantri Bihar. And this is the bungalow where the Lalu family is living for the last 21 years. The RJD Supremo Tejaswi Yadav, all the top guns of RJD is living in that bungalow for the last 21 years. And now a fresh notice has been issued by the Building Construction Department to vacate this bungalow.
0: Switching tracks now to the Delhi NCR region, a shocking murder has rocked India's para sports community. 24-year-old para athlete Chirag Tyagi, who

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
3: Where the software engineer meets the gifted content writer to create the big dream, the world comes together at Sharda University.

0: categorically stated
1: that she is planning. Rahul Gandhi, well, it is the opposition leaders from across the India bloc that have strongly condemned this attack, calling it a serious assault on democratic politics. And of course, Rahul Gandhi there terming the incident absolutely unacceptable and alleged a deliberate lack of police protection, saying law and order in West Bengal is beyond control. Then we, on the other side, we had Akhilesh Yadav also coming out and condemning the attack, calling it an example of BJP's politics of violence and hate. Then the BJP has rejected those allegations, as far as those allegations of involvement are concerned. Bengal Minister Agni Mitra Paul condemned the attack, but said that Abhishek Banerjee's own politics and remarks have triggered this public anger. She claims that the BJP had no role whatsoever, argued that the confrontation basically has reflected the growing public resentment against TMC rather than any organized political conspiracy.
2: ने मेरे को फोन किया था, उन्होंने कहा दीदी कोई ममता जी कोई जरूरत है तो मेरे को बताया बता रहा तो मैं उसको हैदराबाद में ले जा सकते हैं और कोई भी जगह पे. ए राहुल जी मेरे को फोन पे बताया. ऑल द लीडर्स आर टॉकिंग एंड आई हैव सीन अखिलेश यादव. I have seen the tweet of including Omar, including other political parties also.
3: Kapil
2: Sibbal ji.
4: Venugopal
2: ji. All they have sent their tweets. So I have seen it. But I am told, but that time I was not in a mood to see because we are concerned about his health and his health condition is not that good.
4: So did he unko kahin
5: ba hai wo bahut buri tarah se zakhm hai. To पहले जो हॉस्पिटल में हम लोग ले गए थे तो एक खबर आ रहा है, कोई इंस्ट्रक्शन का बात है, इंस्ट्रक्शन नहीं है उनको रखने का देखने का, इसलिए ये दूसरा हॉस्पिटल. हम लोग कोई हॉस्पिटल को कोई दोष नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये एलिगेशन आ रहा है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का एक सेक्शन से प्रेशर आ रहा है उनके ऊपर. ये लाइट करके दिखाना होगा क्योंकि ये अभिषेक बैनर्जी का ऊपर जो प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी वाइज हमला हुआ उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट लोग कंडेम कर रहे हैं, पूरा देश में हो गया है, पूरा वर्ल्ड पे हो गया है.
6: जो हुआ है अभिषेक के साथ वो नहीं होना चाहिए था. कानून किसी को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन पिछले 15 साल से जनता ने जो भुगत रही थी, एक एक व्यक्ति को सताया गया है, किसी को नहीं छोड़, सबका अधिकार को हरण किया गया है. कानून व्यवस्था नहीं, कुछ सुविधा नहीं, बस रूटता रोड बंद कर दिया घर के सामने से 10 साल से, ब्रिगेड लगा दिया गया, किसने अधिकार दिया? तो जनता की जो रोष है वो तो कहीं ना कहीं आना चाहिए. जनता कितना खपा हुआ है देखिए फलता इलेक्शन में, अब टीएमसी को फोर्थ पोजीशन मिला है, इसी को देख के समझ जाना चाहिए काहे रिस्क ले रहे हैं, हीरो बनने क्यों जाते हो भाई जो जिंदगी में नहीं किया.
7: देखिए डॉक्टर अगर सोचेगा कि आपको कुछ हुआ नहीं है, आपको सिर्फ एक पैन 40 का जरूरत है, आपको क्या हॉस्पिटल में भर्ती किया जाएगा, आपको बेड दिया जाएगा? हाँ, नाटक करने के लिए, राजनीति करने के लिए. अब डॉक्टर लास्ट बात बोलेगा ना, हम तो नहीं बोल सकते, सीएम साहब तो नहीं बोल सकते, ममता बनर्जी आप भी नहीं बोल सकते. आपका भाईपो को, आपका भांजा को पैन 40 का जरूरत था, उसके लिए भर्ती होना जरूरत नहीं था. राजनीति फिर से बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव राजनीति मत करिए.
8: बंगाल में जो तहजीब इन लोग बनाए हैं, ये वो खुद तहजीब की शिकार बनते जा रहे हैं. ये पहले जो टीएमसी पार्टी करते थे गुंडागर्दी, वो आज बीजेपी पार्टी कर रहे हैं. बात तो एक ही है, जिन्होंने आप कहते हैं ना सपेरे सांप के हाथ में मौत होती है, ये टीएमसी पार्टी के पुराने जो गुंडागर्दी बंगाल में होते हुए हम देखे हैं, उसका ही दौर अभी बंद नहीं हुई, चल रहे हैं. मैं कह रहा हूं कि सारे चीज बंद होना चाहिए. सियासत करने के अधिकार सबका है, पार्टी करने की अपना बात रखने की अधिकार सबके है, ये आजाद है हम सब पार्टी, ये तहजीब बना के रखना चाहिए.
1: Right, so those are the reactions coming about as far as the India bloc is concerned, and they're condemning that very attack. But let's listen into what Mamata Banerjee is saying. Mamata Banerjee, do remember there is a video that has now been posted by the BJP, in which Mamata Banerjee allegedly is threatening the hospital CEO, calling him arrogant over the treatment to her nephew Abhishek Banerjee when he was rushed to that place after he came under attack. Listen in.
0: Please, Mr. Tandon, you have done the wrong thing. Please, remember what is you have done for it.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
3: Where the software engineer meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.
4: Bharosa on Modi ji, an extraordinary management and assurance of courage given by Amit Shah ji to all the people. We are with you.
5: Illegal migrant, ye Bangladesh se ghuspitiya ke liye ye dono party pratibadh hai, desh ki janta ke liye nahi. इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार।
6: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ। भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड।
7: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
8: ओडिशा का है। रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की है।
9: आई थिंक इट विल बी गुड टू ब्रिंग बैक the confidence of industry.
10: The people of Kerala understood the real politics of CPM and left Democratic Front.
11: And that kind of victory is truly astonishing. And I do believe it marks a return of the Congress with the kind of mandate to bring about radical transformation.
12: आपने तो दीदी को एकदम धो डाला।
13: इसमें जनता का जीत है, मोदी जी का जीत है।
14: आज के की खावे झालमुड़ी ना माचर झोल।
12: How will you celebrate?
13: झालमुड़ी माचर झोल with रसगुल्ला।
15: You know, you remember, you promised me that you will come to Kabini and do an interview with me. You like going to the forest?
16: This is a declaration of our state that to the entire country that our Kerala is secular.
17: ये विजय बंगाल की जनता के विशेष करके मातृशक्ति की।
12: One clip that went most viral was the non-interview. Cruz spent some time with him. We have these whistles out for you, and the whistles are for the fact that you got the poll right, which is quite fantastic.
18: We saw you campaigning, ma'am, for the RG Kaur victim's mother as well. You know, that was a telling moment. Do you believe that that incident in some ways was a tipping point?
19: I think that was not the only incident.
7: Tabhi puran khule তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে
8: थोड़े में ज्यादा स्वाद यह तो है इसकी खास बात।
11: वाओ मामा क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा
13: सबका

0: incident, yesterday's incident, Abhishek's incident, my incident. He is a killer. He is supposed to protect, but he has become a killer.
1: पूरा रिकॉर्डेड है। आप ईटा मारा है, अंडा फेंका है, पत्थरबाजी किया है, ये क्या है? जरा बताइए। मेरा आंख में ईटा मारा है, मैं आंख खोल नहीं पा रहा हूँ। गुस्सा मारा है, उसको लगा पीठ में, छाती में, हाथ में, पैर में। क्या हाल किया है? मैं एक हेलमेट पहन के जा रहा था, नहीं तो आज मेरा सर दो टुकड़ा हो जाता।
2: They are threatening along with police administration to all the hospitals and the nursing home authority not to admit Abhishek Banerjee because they don't want that they should be detained. Now doctors, they are sorry. Though they advise and as per their advice, he was admitted. In ITU.
3: All right, now my colleague Ritik Mondal is reporting from Ground Zero in Sonarpur, bringing details from the spot where Abhishek Banerjee was allegedly attacked during his visit. Now, the report captures eyewitness accounts and the tense atmosphere following the incident where the TMC MP was reportedly heckled and eggs were thrown at him amid the political protests. What the situation is on ground like right now, take a look.
4: We are currently at that very area where Abhishek Banerjee, Trinamool Congress MP, was subjected to heckle and people protested in front of him. But once he visited this particular place, this particular house belonged to Shanju Kormukar. TMC alleges that Abhishek Banerjee headed to this place to meet the keen to his TMC man who was died due to political violence. But once we reached in this area and spoke to the woman who protested in front of Abhishek Banerjee, they narrated all they had been facing for a long time, that they said there was no development were happening in this particular area. You can see this muddy road headed to this this area. Believe me, this comes under Kolkata Kolkata area, and it comes under Sonarpur municipality area. And they also allege this person Shanju Kormukar was associated to several heinous crime, including threatening to women, not letting any development to happen in this locality. Even there are serious allegations being labeled against him to being torture on women, and which is why the in the come out and they said they protested in front Abhishek Banerjee, especially women gheraud him and protested in front of him. With camera person Suraj Pandey, this is Ritik for NDTV. तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता संजू नश्कर के घर पर आए थे अभिषेक बैनर्जी, जिनका मौत हो गया है, और उनके घर पर हम पहुंचते हैं. हालांकि लोगों का कहना है कि जिस तरीके के आक्रोश का उन्होंने निशाना बनाया गया, उसका कारण ही यहां पर ना होने वाली उन्नयन. उनके घर पर हम आए हैं, लेकिन लगातार लंबे समय से हम कोशिश कर रहे हैं कि घर में कौन है इनसे जानने के लिए. दादा, घर पर कोई है? दादा, कोई है? इस घर में फिलहाल मौजूद कोई नहीं है. स्थानीय लोग बता रहे हैं कि इसी रास्ते से होकर अभिषेक बैनर्जी पहुंचे थे. उससे पहले उनके ऊपर जो है पथराव किया गया, इसके अलावा जो है अंडा फेंक के मारा गया. यहाँ पर आप सीधी तस्वीर जो देख सकते हैं कि उनका कहना है कि लंबे समय से इस इलाके.
3: Now, the opposition leaders from across the Indie bloc have strongly condemned the attack on Abhishek Banerjee, calling it a serious assault on democratic politics. Congress MP Rahul Gandhi termed the incident unacceptable and alleged a deliberate lack of police protection for the MPs. He also said that the law and order in West Bengal is beyond control. Akhilesh Yadav of the Samajwadi Party, on the other hand, to condemn the attack. He called it an example of BJP's politics of violence and hate. The BJP, meanwhile, has rejected all allegations of involvement, and the Bengal minister, Agni Mitra Paul, had condemned the attack but said that Abhishek Banerjee's own politics and remarks had triggered the public anger. She claimed that the BJP had no role in the incident and argued that confrontation reflected growing public resentment against the TMC rather than any organized political conspiracy.
2: उन्होंने कहा दीदी कोई ममता जी कोई जरूरत है तो मेरे को बताया बताना तो मैं उसको हैदराबाद में ले जा सकते हैं और कोई भी जगह पे। ए राहुल जी मेरे को फोन पे बताया ऑल द लीडर्स आर टॉकिंग एंड आई हैव सीन अखिलेश यादव आई हैव सीन द ट्वीट ऑफ इंक्लूडिंग अमोर इंक्लूडिंग अदर पोलिटिकल पार्टीज ऑल्सो
5: कपिल
2: सिब्बल जी ऑल वेणुगोपाल जी ऑल दे हैव सेंड देयर ट्वीट्स सो आई हैव सीन इट बट आई एम टोल्ड बट दैट टाइम आई वॉज नॉट इन ए मूड टू सी बिकॉज वी आर कंसर्न्ड अबाउट हिज हेल्थ एंड हिज हेल्थ कंडीशन इज नॉट दैट गुड।
6: तो दी क्या उनको कहीं
7: जो हुआ है अभिषेक के साथ वो नहीं होना चाहिए था। कानून किसी को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन पिछले 15 साल से जनता ने जो भुगत रही थी एक एक व्यक्ति को सताया गया है, किसी को नहीं छोड़ा, सबका अधिकार को हरण किया गया है। कानून व्यवस्था नहीं, कुछ सुविधा नहीं, बस रूट था, रोड बंद कर दिया घर के सामने से 10 साल से, ब्रिगेड लगा दिया गया, किसने अधिकार दिया? तो जनता की जो रोष है वो तो कहीं ना कहीं आना चाहिए। जनता कितना खपा हुआ है देखिए फलता इलेक्शन में, अब टीएमसी को 4th पोजीशन मिला है, इसी को देख के समझ जाना चाहिए काहे रिस्क ले रहे हैं, हीरो बनने क्यों जाते हो भाई जो जिंदगी में नहीं किया।
8: पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार चल रही है, दिल्ली में किसकी सरकार चल रही है, जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस के एक युवा नेता जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है, जो सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो एक बड़ा नेता है, लोकप्रिय नेता है, चुनाव हारने के बाद बीजेपी के गुंडे स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट एक सांसद के ऊपर सड़क पर हमला करते हैं, पत्थर मारते हैं, ये कौन सा संस्कार और संस्कृति आप इस देश के राजनीति में लाना चाहते हो? मिस्टर मोदी जी और अमित शाह जी और वहाँ के मुख्यमंत्री से मेरा आह्वान है।
9: देखिए मैं समझता हूँ कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरह की घटनाएं लोकतंत्र को शर्मसार करती हैं। पूरे चुनाव के दौरान मैंने लिखा भी बोलता भी रहा कि बंगाल का चुनाव एक अभूतपूर्व हिंसक दौर में जा रहा है। भाषाई हिंसा वास्तविक हिंसा को जन्म देती है, उसको एक्सेप्टेंस उसकी स्वीकृति करवा देती है। कई दोस्त कह रहे हैं कि तृणमूल के दौर में भी ऐसा होता था, क्या ये उससे जस्टिफाई हो जाएगा? तब होता था तो भी गलत था, आज हो रहा है तो भी गलत है।
3: And while all of this is happening, the BJP has posted a video of Mamata Banerjee allegedly threatening the hospital CEO, calling him arrogant over treatment to her nephew Abhishek Banerjee. Take a listen in.
10: Although your head to admit the effort, you forcefully don't be mistaken. You need to never be cheated. You should be ashamed for it. Everybody will remember this arrogance. Don't come with us. Here to see on your face. You are running the hospital, getting the doctor. Because we have been in war. Tomorrow, if your central government is not up, then we will take it. For your health, you should be safe at all. Also, you know,
3: And from West Bengal, let's tell you all that's happening in the state of Karnataka, where the state will usher in a new political chapter on June 3rd, with D.K. Shivakumar set to be sworn in as the chief minister. The formal election of D.K. Shivakumar as the Congress Legislature Party leader paved the way for the oath-taking ceremony, marking the beginning of a new administration in the state. After being elected as the CLP leader, D.K. Shivakumar met the governor along with D.K. Shivakumar to stake claim to form the government. Now, even as preparations gather pace for the swearing-in, attention will remain on focused on the composition of the new cabinet. The key decisions on deputy chief ministers and ministerial berths are expected to reflect the party's regional and caste balancing strategy.
5: ಈ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಇನ್ನು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಯಾವುದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಡಿಸಿಎಂ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಗಳು ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅದು 3ನೇ ತಾರೀಕು ಆದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನ ಬಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರಪೋಸಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ತ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆತ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಅವ್ರು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ, ಅದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದ್ 15 ದಿವಸ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಂತ ಸದಸ್ಯರೇನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದ್ ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಏನ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೋ
6: ಪತನೇ ಹೋನಾ ಚಾಹಿ ನಹೀ ಮಚ್ಚ, ಯೇ ತೋ ಅಂತಿಮ ತೋ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕಾ ನಿರ್ಣಯ ಹೈ, ಅಭಿ ತೋ ಸಿರ್ಫ ಅಭಿ ಚರ್ಚಾ ತೋ ಸಿಎಂ ಕಾ ಚಲ್ ರಹಾ ಹೈ, ಇಸ್ಕೆ ಬಾತ್ ಅಭಿ ಟೈಮ್ ಬಹುತ್ ಹೈ, ಅಗರ್ ಚಾಹಿಯೇ ತೋ ಬನಾ ಸಕ್ತಿ ಹೈ. ಅಭಿ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲ್ ತೋ ಪಹಲಾ ಬನ್ನಾ ಹೈ, ಬಹುತ್ ಜರೂರಿ ಹೈ, ಕ್ಯೂಂಕಿ ಜ್ಯಾದಾ ದಿನ ಹಮ್ ವೇಕೆಂಟ್ ನಹೀ ರಖತೆ ಸರ್ಕಾರ್ ಕೋ, ಫಿರ್ ಕಾಮ್ ಶುರೂ ಕರ್ನಾ ಹೈ, ಇಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಹೋ ಜಾಯೆಂಗೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೋಯೆಂಗೆ, ಚರ್ಚಾ ಕರೆಂಗೆ ಬಾದ್ ಮೇ. ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಣಯ ತೋ ಹಮಾರಾ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಲೇ ಲೇಂಗೆ, ವೇಟ್ ಕರೆಂಗೆ ತಬ್ ತಕ್. ಬೇಸ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಚಲತಾ ಹೈ ಜ್ಯಾದಾ, ಕಾಸ್ಟ್ ಕೋ ತೋ ಸಮಾನತಾ ಮೇ ರಖನಾ ಚಾಹಿಯೇ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕರ್ನಾ ಹೈ ಪಹಲಾ. ದೂಸರಾ ಜೋ ಅನುಭವ ಹೈ, ಜೋ ಅಚ್ಛೇ ಉನ್ಕಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಕರ್ ಸಕ್ತಾ ಹೈ, ಅಚ್ಛೇ ಉನ್ಕಾ ಪಿಛಲೇ ಕಾರ್ಯಕಾಲ ಅಚ್ಛಾ ಓ ರಹೇಂಗೆ, ಔರ್ ಕೋಯಿ ಅಚ್ಛಾ ರಹೇಂಗೆ ತೋ ಉಸ್ಕೋ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಚೂಸ್ ಕರೆಂಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲ್ ಮೇ.
11: ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ದಿ Siddaramaiah ji is a leader and he himself is proposed. It shows his statesmanship and greatness. Our plan is for 2008 we have to form the government, Congress government. For that purpose, whatever the high command take decision, we are abide by it. I have worked there in the last 30 years in the parliament. I have no difference on this one. I am not taking very seriously any issue. If the government, the high command has taken any decision, we'll abide by it. We'll go together again to bring back the
2: sir
3: time for us to slip into a very quick commercial break. Don't go anywhere. News and updates continue.

0: 2022 में पंजाब के लोगों ने ढेरों उम्मीदों के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार को मौका दिया। पिछले 4.5 साल में क्या आपने जिन उम्मीदों के साथ ये मैंडेट पाया था उस हिसाब से काम किया या नहीं? 2027 का असेंबली इलेक्शन, आम आदमी पार्टी के पंजाब मॉडल और चीफ मिनिस्टर भगवंत मान का रेफरेंडम रहने वाला है। पंजाब की जनता आपको और मान साहब को एक बार मौका फिर से क्यों दे, इस पर चर्चा करने के लिए एनडीटीवी के नवा पंजाब समिट में जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान का।
1: थैंक यू
0: मान साहब, सत श्री अकाल, वेलकम।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले राहुल जी, एनडीटीवी और पूरे आपके ग्रुप का, जितने भी स्टाफ के आपके लोग इस बहुत ही खूबसूरत कॉन्क्लेव में हिस्सा लेने के लिए आए और आपने यहाँ बुला के हमें मान सम्मान दिया, तो मैं होस्ट भी हूँ तो आपका स्वागत भी करता हूँ पंजाब में, और आपने इतना इज्जत मान दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नहीं, हमें इलेक्शंस का बड़ा शौक है, तो जैसे ही पश्चिम बंगाल का इलेक्शन, तमिलनाडु का इलेक्शन खत्म हुआ, मान साहब ने बोला पंजाब आओगे, हमने बोला फट से चलते, और जैसे ही मौका मिला टिकट कटा के यहाँ पे आ गए। और इलेक्शंस के बिल्डअप में ये मान साहब का पहला इंटरव्यू है, पहली बार ये तमाम सवालों के जवाब लेंगे, इसके लिए मान साहब आपका शुक्रिया। शुरुआत हम लोग करते हैं आपके रिपोर्ट कार्ड से, आप स्टार्ट कीजिए। तमाम लोग जो इस वक्त आपको देख रहे हैं मान साहब, उनको बताइए कि फिर से अगले साल पंजाब की जनता आपको मौका क्यों दे। क्या आपने ऐसा किया जो कि अकाली बीजेपी ने नहीं किया, कांग्रेस ने नहीं किया, कि आपको फिर से पंजाब की जनता चुन के लाए?
1: जो

0: आम आदमी पार्टी ने मैनिफेस्टो में गारंटियां दी थी। आमतौर पे मैनिफेस्टो में वादे होते हैं, लेकिन हमारी गारंटियां थी। अनफॉर्चुनेटली बाद में बीजेपी भी गारंटियां देने लगी। पहले तो वो संकल्प पत्र भी कहते थे, कांग्रेस वाले भी संकल्प पत्र, अब वो भी गारंटियां कहने लगे। तो सबसे पहली गारंटी हमारी बिजली मुफ्त की थी, जो मार्च में हमने ओथ सेरेमनी हमारी हुई 16 मार्च को। जुलाई का पहला साइकिल, जो 2 महीने का साइकिल है पंजाब में बिजली के बिल का, तो जून जुलाई का पहला साइकिल जो फ्री हमने 300 यूनिट हर एक बंदे को, उसमें कोई लाल कार्ड, हरा कार्ड, नीला कार्ड, पीला कार्ड नहीं आता। कोई भी, चाहे आपके घर पे 2 AC भी लगे, आप इस तरीके से वो उसको इस्तेमाल करें कि आपका जो 2 महीने का जो मीटर की रीडिंग है वो 599 रहे, 600 यूनिट से कम रहे तो 0 आता है। 90% पंजाब को बिजली का बिल 0 आ रहा है, और बिजली बोर्ड को भी उस कोई ऐसा घाटा नहीं है। हमारी पार्टी का जो प्रेसिडेंट है ना, जो नेशनल कन्वीनर है, वो IRS ऑफिसर है इंडियन रेवेन्यू सर्विस में। अरविंद केजरीवाल जी ज्वाइंट कमिश्नर रहे हैं इनकम टैक्स में, उनको पता है पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ जाना है, तो हिसाब किताब के हम पूरे
1: ये भी पता है कि पैसा इलेक्शन से पहले दो तभी ज्यादा वैल्यू आती है। पहले 4 साल दे दोगे तो वोटर फिर उसको ग्रांटेड ले लेंगे,
0: नहीं नहीं
1: चुनाव से कुछ महीने पहले दोगे तो राहुल को याद रहेगा।
0: उससे पहले क्या होगा ना, फिर एक तो 15 लाख रुपए मोदी जी वाले आ गए थे लोगों के खाते में, ठीक है ना, तो उसके बाद फिर घर घर नौकरी आ गई कैप्टन वाली, तो फिर उसके बाद सुखबीर बादल के ट्रक भर के आ गए दिल्ली से जो पैसों के लाने थे। जब लोग नौकरी वाले रिटायर होने लगे और ये 15 लाख भी खर्च हो गए, फिर मैंने कहा अब दे देते हैं, अब जरूरत होगी लोगों को, है ना, फिर इसलिए फिर थोड़ा टाइम लग गया, इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया थोड़ा।
1: पहले जब मान साहब का इंटरव्यू होता था तो उसमें मजा ही आता था कि हाजिर जवाबी बड़ी थी, लेकिन मुझे लग रहा है अब आप बड़े सीरियस हो गए। अभी थोड़ा सा आप क्रैक कर रहे हो जोक्स, लेकिन अब आजकल आप बहुत सीरियस सीरियस टाइप का करते हो इंटरव्यू भी। पहले तो एकदम चलता था आपका फॉर्म धार धार धार।
0: नहीं नहीं आप थोड़ा सवाल 2-4 और पूछो, आने वाला फॉर्म हो।
1: अच्छा, इससे हुआ ये कि जो आपने स्कीम्स की, उससे जो फिजिकल सिचुएशन है पंजाब की वो बहुत खराब हो गई। सेंटर ये कहती है कि मैक्सिमम डेफिसिट 3.5% 3.5% के आसपास होना चाहिए, पंजाब का डेफिसिट 4.5% है, 4.5%, यानी कि आप जितनी सरकार आपकी पैसा कमा रही है उससे ज़्यादा पैसा आप खर्च रहे हो, और आप आज खर्च रहे हो इसका भुगतान करेंगे पंजाब की आने वाली जनरेशंस। तो फिस्कल सिचुएशन इतनी ख़राब क्यों है पंजाब?
0: देखो, ऐसा लग रहा है जैसे कर्जे का सवाल ना सेंटर सरकार ने सारे एंकर्स को दे दिया है। यूपी पे कितना कर्जा है? 8 लाख करोड़ का कर्जा है।
1: परसेंटेज पे देखो ना।
0: नहीं नहीं आप यूपी की वो भी तो देखो ना, यूपी बड़ा भी है हमसे। गुजरात पे कितना, देश पे 55 लाख करोड़ देश पे कर्जा था 2014 को जब मोदी जी ने ओथ ली, आज 220 लाख करोड़ है, 4 गुना बढ़ गया। तो ना तो नौकरी मिली, 2 करोड़ नौकरियां भी देनी थी, वो तो आजकल वो कॉकरोच बन के घूम रहे हैं नौकरी वाले, तो ठीक है ना, तो नौकरी भी नहीं दी उनको, 15 लाख भी नहीं आया हर एक के खाते में। और जो जो कहा था कि ये कर देंगे वो कर देंगे, बिशप गुरु बनाने चले थे, बिशप चेला बन के रह गए हम। हमारे फैसले तो व्हाइट हाउस से आते हैं, हमारे पंजाब के फैसले या देश के फैसले कि जी
1: ये तो बहुत जल्दी खुल गए एकदम है। आप तो मैंने बोला कि आप सीरियस होकर जवाब दे रहे हो, आप तो एकदम ही बैटिंग करने
0: लगे। ये सीरियस जवाब ही है ना, जब जब मोदी जी पूरे देश का 220 लाख करोड़ उतार देंगे, पंजाब भी देश में ही आता है, उस दिन हमारा भी उतर जाएगा।
1: नहीं नहीं ये हुआ एक आपने जवाब दिया, लेकिन एक पॉलिटिकल जवाब, एक बहुत सीरियस क्वेश्चन पे,
0: लेकिन हम विकास पे खर्चा हो रहा है।
1: हाँ जी।
0: देखो पहले वाली सरकार 3.5 लाख करोड़ छोड़ के गई थी, लेकिन मैं ये कहता हूँ 3.5 लाख छोड़ा, लेकिन 3.5 लाख करोड़ उन्होंने कहाँ खर्च किया? सड़कें मैं बना रहा हूँ, सरकारी स्कूल मैं ठीक कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटीज को पैसा मैं दे रहा हूँ, बिजली बोर्ड का कर्जा मैं उतार रहा हूँ, हॉस्पिटल मैं बना रहा हूँ, वो कहाँ बना के, नौकरियाँ मैं दे रहा हूँ, वो कहाँ खर्च के चले गए? जो जो उनके मतलब हमारा एक वित्त मंत्री था, 4 साल तो वो अकाली दल में वित्त मंत्री था, 5 साल वो कांग्रेस में वित्त मंत्री था, और अनफॉर्चुनेटली मेरा भी पार्टी का प्रधान रहा मनप्रीत बादल, वो 9 साल यही कहता रहा खजाना खाली है, खजाना खाली है, खजाना खाली है। मैंने कहा जी अगर खाली है उसको खजाना क्यों कहते हो, उसको पीपा कहो, है ना, जब है ही खाली उसको खजाना क्यों कह रहे हो यार, खजाने में तो कुछ होता है। इससे नेगेटिविटी इतनी फैल गई कि पेरेंट्स भी अपने बच्चों को कहने लगे बेटा कनाडा को निकल जाओ, बेटा ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, बेटा आईलेट्स कर लो, चलो निकल जाओ, यहाँ तो खजाना खाली है। मेरे अभी वित्त मंत्री आपके यहाँ आके बैठ के गए हैं, हमने कभी नहीं कहा खजाना खाली।

0: हमने खुल के पैसे पब्लिक को, पब्लिक के पैसे दिए, ठीक है ना, हमारी स्कीमें
1: आपने ज्यादा ही दे दी, जो थे भी नहीं वो भी दे दिया आपने,
0: हैं जी,
1: जो थे भी नहीं वो भी दे दिया आपने, मतलब कि इंटरेस्ट बर्डन आपने इंक्रीज कर दिया क्योंकि आपने खर्चे इतने बढ़ा दी, जितना आपका स्टेट का रेवेन्यू है नहीं उससे ज्यादा खर्चे कर दिया आपने।
0: नहीं नहीं, स्टेट देखो दो किस्म के कर्जे हैं, अगर तो लोन लेके ट्रक ले रहे हो तो ट्रक कमाई करेगा, लोन उतार देगा। अगर लोन लेके आप बेटे को मोटरसाइकिल और गाड़ी लेके दे रहे हो, बड़ी जो खर्चा करती है, फिर वह आपका कर्जा जो है वो आपका दुगना तिगना होगा। हम पंजाब वाले जो लोग हैं, किसी का कर्ज हम रखते नहीं हैं अपने सर पे। पंजाब जो है ना वो कर्जा उतारने में बहुत माहिर है, चाहे वो किसी ने थोड़ा सा भी एहसान कर दिया हो ना पंजाबियों पर, उसका भी कर्ज पंजाबी उतार देते हैं। तो लेकिन हम पिछली सरकारों की वजह से, सिस्टम की वजह से थोड़ा डेट में चले गए थे, लेकिन पंजाब वापस आएगा। पंजाब बहुत बार गिरा है लेकिन पंजाब बहुत बार उठा भी है। की होया जे पतझड़ आई, तू अगली रुत्त विच यकीन रखी, मैं लभ के लियाना कितों कलमा, तू फुल्लां जोगी जमीन रखी।
1: मान साहब, इस इंटरव्यू से ठीक पहले, कुछ टाइम पहले, राज्यसभा के जो MPs थे आपके, वो पच के भाग गए, वो चले गए BJP में। अब सवाल यह है कि आपकी नाक के नीचे राघव चड्ढा तो पहले से ही नाराज चल रहे थे, संदीप पाठक भी चले जाते हैं, बाकी भी आपके लोग चले जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, ऐसे कैसे हो गया?
0: पता क्या है, देखो किसी का मन कब बदल जाए ये तो कोई जान नहीं सकता इस बात को। तो लेकिन BJP का जो काम करने का तरीका, पहले ED भेजो, ED के छापे होंगे, 2-3 दिन वहाँ रेड चलेगी, फिर उनको मनाएंगे, देख लो आप BJP ज्वाइन कर लो, बच जाओगे। 10 दिन पहले उस बंदे के घर पे ED आती है, 2 दिन ED सब सर्च करती है, गुड़गांव में भी, जलंधर में भी, लुधियाना में, जहाँ जहाँ भी उसके बिजनेस हैं। और 10 दिन के बाद वो BJP ज्वाइन करता है, उसको Y कैटेगरी की सिक्योरिटी दे देते हैं। तो मतलब कौन सी वाशिंग मशीन है उनके पास, जिसमें डालते ही बंदा बिल्कुल क्लीन हो जाता है। तो डरा के या लालच दे कर, या फिर वैसे कि हम आपको सेंट्रल में ये दे देंगे वो दे देंगे, ऐसे लालच दे के ले गए। लेकिन उन जो गए हैं, मैं राष्ट्रपति जी को मिला उस सिलसिले में, डेमोक्रेसी का इससे बड़ा मजाक क्या होगा कि BJP के आज पंजाब में 117 में से 2 MLA हैं, 2 विधायक हैं, 6 राज्यसभा के मेंबर हैं। ऐसा हो सकता है जिनके 2 हों उनके 6 MP हों? तो BJP को भी थोड़ा अक शर्म होती है, एक पंजाब में कहते हैं ना, BJP को थोड़ा सोच लेना चाहिए था कि या तो फिर ऐसा करो, इनको इस्तीफा दिलवा के कहीं राजस्थान से, बंगाल से, कहाँ से और मर्जी, कम से कम अपने MLA द्वारा तो चुने गए हों, वो हमारे MLA द्वारा चुने हुए हैं और BJP कह रही है कि हमारे पास इतने हो गए, वो तो तोड़ फोड़ में लगे हुए हैं, चाहे शिवसेना तोड़वा लो, चाहे उस शरद पवार की पार्टी तोड़वा लो। मैं तो ये कहता हूँ, लाइव चल रहा है ना, इसका मतलब काट नहीं सकते आप, है ना,
1: काटेंगे क्यों?
0: हाँ नहीं, इसका मतलब कैंची नहीं चल सकती। जिस पार्टी ने भी BJP के साथ अलायंस किया ना, वो पार्टी खत्म भाई साहब। दुष्यंत चौटाला को पूछ लो, कहाँ गई उसकी पार्टी? नवीन पटनायक को पूछ लो उड़ीसा, कहाँ गई पार्टी? बिहार में नीतीश कुमार से पूछ लो, शिवसेना में उद्धव ठाकरे से पूछ लो, शरद पवार से पूछ लो, बड़े घाक सियासतदान अपने आप को मानते थे। ये तो जिसके साथ जाते हैं ना, पहले उसी को ख़त्म करते हैं। तो इसीलिए मतलब इनके साथ अलायंस जिन्होंने भी किया, बाद में पछताए हैं वो। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ऐसे डेमोक्रेसी का मजाक मत बनाएं। फेयर फील्ड जो मतलब एक एक जैसा ग्राउंड मिले, अगर ये मोदी जी की लहर पे जीते, लहर पे जीतो, हम उस हार को एक्सेप्ट करेंगे अगर पब्लिक ने उनके नाम पे वोट दिए। लेकिन वोट काट देंगे, वोट SIR में आपको दादा का बताना होगा, आप पंजाब में कैसे करोगे जी SIR? फिर आप कहोगे मेरे परदादा कहाँ थे? मेरे परदादा तो पाकिस्तान से आए थे।
1: पंजाब में भी तो हो रही है SIR की एक्सरसाइज,
0: है जी,
1: पंजाब में भी तो
0: हो रही है 25 जून से। लेकिन ये मांग रहे हैं जी आपके परदादा का एड्रेस कहाँ का था? तो मेरी माँ ने अगर वोट बचानी है तो उसको पाकिस्तान सियालकोट से लेके आना पड़ेगा वो परदादा का सर्टिफिकेट। आधा पंजाब तो हमारा उधर से आया हुआ है, तो ये क्या बात होगी परदादा आपके कहाँ थे? ये तो सीधी सी बात है कि आपको वोट नहीं देना। हमने 27 लाख वोटर की एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है बंगाल के लोगों की, और जजमेंट क्या आई? कोई बात नहीं जी, आप अगली बार वोट डाल लेना। ये कोई जजमेंट है? ये मतलब ये डेमोक्रेसी है? तो मतलब ये तो लूट तंत्र है।
1: नहीं, पर आप

0: ने बोला कि बीजेपी को आंख की शर्म करनी चाहिए, पर आपको भी तो ये सोचना होगा ना कि जिन लोगों को आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा की टिकट्स दी, अगर आप बिजनेसमैन को देखो, भज्जी अब कहते हैं कि पैसे लेके सब राज्यसभा गए थे, हरभजन सिंह तो अब खुले में बोल रहे हैं।
1: नहीं चलो भज्जी से पूछ लो कि उनसे कितने पैसे लिए थे हमने, ये एक बता दे।
0: वो दूसरों की बात कर रहे हैं अपने।
1: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, अच्छा हम भज्जी वाली मुफ्त में दे दी, कोई पैकेज में आ गई थी कोई? भज्जी से पूछ लो तेरे से कितने लिए, बाकियों के बाकी भी बता देंगे कितने कितने लिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ ना, अगर कोई मशीन आ गई ना आने वाले दिनों में, आ सकती है, AI आ गया है, सब कुछ वो सोच के भी बता देता है। अगर कोई AI के जरिए कोई ऐसा टूल आ जाए जो दिल पे लगाओ और बंदे का पता चल जाए, ये इसके दिल में कितना खोट है, इसके दिल में क्या चल रहा है, तो सबसे पहले उसका ग्राहक मैं हूँगा, मैं कस्टमर बनूंगा उसका, मैं खरीद लूंगा। अब क्या करें, इससे पहले योगेंद्र यादव भी थे, प्रशांत भूषण थे,
0: उनको तो नहीं दी आपने राज्यसभा टिकट।
1: हैं जी,
0: योगेंद्र यादव, आशुतोष, प्रशांत भूषण, इनको इनकी आइडियोलॉजिकल एक कमिटमेंट थी ना, आपने इंडस्ट्रियलिस्ट को दे दी। आम आदमी पार्टी ने 2022 में 17 में पंजाब की जनता को बोला कि हम बाकी पार्टियों से अलग हैं, हमें हम पे भरोसा करो। आपने टिकटें दे दी ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट को, बिजनेसमैन को, उनको तो कॉम्प्रोमाइज करना ज्यादा आसान है।
1: नहीं मुझे ये बताओ, राज्यसभा में हर राज्यसभा का मतलब यही था कि जो लोग इलेक्शन नहीं लड़ते, एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं आते, लेकिन उनका देश में कोई ना कोई योगदान है। अशोक मित्तल जो हमारे थे वो एजुकेशनिस्ट हैं, उनकी लवली यूनिवर्सिटी जलंधर, उनके 40,000 स्टूडेंट हैं, वो एक एजुकेशनिस्ट के तौर पे टिकट दी हमने। भज्जी स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट करते थे, उनको स्पोर्ट्स के कोटे में टिकट दी। इंडस्ट्रियल कोटे में राजेंद्र गुप्ता को और संजीव अरोड़ा तो चलो इधर आ गए अब, उनको दी। तो मतलब हर वर्ग हमारे पास भी तो वकील, जो अभी हमारे वित्त मंत्री हैं वो वकील रहे हैं, मैं एक आर्टिस्ट था, अरविंद केजरीवाल एक ऑफिसर थे इंडियन रेवेन्यू सर्विस में, मनीष सिसोदिया पत्रकार थे। हमारी पार्टी में समाज का हर वर्ग का बंदा है हमारे पास, मतलब वकील हैं, डॉक्टर हैं। पार्टी ऐसी है कि कोई भी आके कॉन्फिडेंस से कह सकता है कि मैं भी इस इलेक्शन से लड़ूंगा। बाकी यार राहुल, बंदे का क्या पता चलता है, आप भी तो आज तक में थे तो। अरे एक और तो बात, एक और बात बता, मैं जब पहली बार चुन के गया 2014 में संगरूर से, सबसे पहले सेंट्रल हॉल में इन्होंने मुझे पकड़ लिया, कहते चलो स्टूडियो चलो। नोएडा में स्टूडियो था फिल्म सिटी में, मैं मुझे पता है मेरे लाल रंग का कुर्ता मैंने पहना हुआ था, तो इन्होंने मेरे साथ शो किया, उसका नाम था सीधी बात, जो प्रभु चावला जी करते थे, है ना। तो इन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि तुम तो बॉलीवुड वाले हो, तुम तो मुंबई चले जाओगे, अभी नए नए जीत के आए हो, ये सेशन पहला सेशन है, उसके बाद बॉलीवुड वाले तो कभी मिले, धर्मेंद्र भी नहीं आए, विनोद खन्ना भी नहीं मिले कहीं, अमिताभ बच्चन छोड़ गए, गोविंदा भी नहीं कामयाब हो सके, तो तुम तो बॉलीवुड वाले चले जाओगे। मैंने कहा भाई ऐसा करते हैं, अगले 5 साल तक देखते हैं, तो अगर आप इस चैनल में रहे तो मैं आपके साथ इंटरव्यू करूंगा। तो अभी पिछले दिनों जब NDTV पे मैंने इनको देखा, तो मैंने इनको फोन किया, मैंने कहा राहुल मैं तो वहीं खड़ा हूं यार। आप कहते हैं, या फिर कहते हैं जब जी इनको पूछ लो, तो कहते हैं वो कुछ और बात थी, वो हमारी तरक्की होती है हमारी, तो कुछ नहीं। लेकिन हाँ, जहां जाओ वहां कमिटमेंट से काम करो। आजकल NDTV में हो, हमें उम्मीद है कि आप एक स्टेप आगे ही बढ़े होंगे, कोई आपकी प्रमोशन डिमोशन तो नहीं हुई होगी ना?
0: मेरे पीछे कोई EDCBI नहीं आया, मैं अपनी मर्जी से आया, ये अलग बात है, ऐसा नहीं कोई EDCBI पीछे लगी हुई थी। बट राघव चड्ढा ने 2022 का जो कैंपेन था उसको मैनेज भी किया, आपके साथ लगे भी रहे बहुत देर तक, एक यहाँ पे इमेज बनी या बनाई गई कि वो सुपर CM है। आपको लगता है कि उनके जाने का नुकसान होगा आपको आने वाले असेंबली इलेक्शन में?
1: नहीं नहीं, वो पंजाब के लोगों के साथ, मासेस के साथ उनका कोई लिंक नहीं था, वो तो मतलब ऊपर वाले राज्यसभा वाले थे। देखो एक और बात मैं बताता हूँ, राज्यसभा में ऐसे भी आ जाते हैं जो मतलब हार जाते हैं। जेतली साहब अमृतसर से हार गए तो राज्यसभा आ गए, स्मृति ईरानी अमेठी से हार गई राज्यसभा में आ गई। एक समय तो ऐसा था कि 70% कैबिनेट जो मोदी साहब की पहली कैबिनेट थी वो राज्यसभा से थी। लेकिन अगर आप लोग पब्लिक ने चुन लिया, ये बहुत बड़ी बात है, चाहे गांव का सरपंच बन जाओ आप, पब्लिक द्वारा चुन लेना बहुत बड़ी बात है। राजेंद्र नगर के वोटरों ने राघव को चुन लिया था और उसको जल बोर्ड का चेयरमैन भी बना के रखा। लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि जब इस्तीफा दे देते हैं तो पब्लिक दोबारा नहीं चुनती कभी भी उनको। बहुत से ऐसे नेता हैं हमारे देश में जो ये बात दिल में लेके ही चले गए कि काश मुझे कभी जनता चुन ले। सबसे बड़ी एग्जांपल डॉक्टर मनमोहन सिंह की है। 10 साल हमारे प्रधानमंत्री रहे, बड़े अच्छे इकोनॉमिस्ट थे, बड़ी दुनिया में ख्याति थी उनकी, लेकिन कभी भी वो पब्लिक द्वारा चुने नहीं गए। अगर चुना हुआ आपने पद छोड़ दिया तो लोग इतना ज़्यादा गुस्सा करते हैं कि यार हमने आपको चुन लिया था, इससे बड़े क्या बन जाओगे। राज्यसभा इज़ अ सेलेक्टेड, लोकसभा इज़ अ इलेक्टेड। सो इलेक्टेड में जो मज़ा है ना, वो आप मेरे साथ बैठते रहे हो सेंट्रल हॉल में, तो वहाँ इलेक्टेड और सिलेक्टेड दोनों बैठते थे। लेकिन देख लेना, जो इलेक्टेड है वो चिंता में रहेगा हर वक्त कि मैंने पब्लिक में जाना है, मैंने धन्यवाद भी करना है, मैंने पैसे भी, वो जो चाहे एमपी लैड है या कोई भी को काम करवाना हो अपने क्षेत्र का, तो उसको चिंता रहती है मैं दूसरी बार जब जनता में जाऊंगा क्या मुंह लेके।
0: सही बात,
1: राज्यसभा वालों को नहीं रहती। तो शायद राघव चड्ढा जी ने ये बात नहीं पहचानी कि मैं इलेक्टेड भी था, इलेक्शन उनको सीट छोड़नी नहीं चाहिए थी राजेंद्र नगर वाली।
0: पर जैसे संदीप पाठक थे वो पार्टी के स्ट्रेटेजिस्ट थे, आपके एमएलएस के साथ कैंडिडेट्स के साथ वो स्ट्रेटेजी बना रहे थे। अब जब स्ट्रेटेजिस्ट पार्टी से बाहर होता है, आपको लगता है आपका जो थिंक टैंक है, ब्रेन ट्रस्ट है, वो थोड़ा कमज़ोर पड़ता है असेंबली इलेक्शन से पहले?
1: नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पंजाब के लोग तो खास तौर पर ऐसा नहीं सोचते। वो कहते हैं देखो पार्टी में ऐसी उथल पुथल चलती रहती है, आना जाना लगा रहता है, लेकिन वो है कि संगठन बड़ा होता है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कल्याण सिंह, मैं छोटा था तब, लेकिन मुझे बाद में जब मैंने पढ़ा इसका सारा, कल्याण सिंह ऐसे नेता थे यूपी के, इतना प्यार करती थी जनता उनको कि जब वो जनसभा करके निकलते थे तो लोग उनके पाँव की माटी को माथे से लगाते थे, इतना ज़्यादा प्यार करते थे। वाजपेयी साहब से कोई झगड़ा हो गया पार्टी की, पार्टी में पार्टी छोड़ दी, उसके बाद भाई साहब पता ही नहीं चला कहाँ चले गए। उमा भारती, सो पार्टी संगठन, मैं तो कहता हूँ कि संगठन बड़ा होता है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अब वो जो जिनकी आप बात कर रहे हो, अभी मेरे ख्याल में आपने हमें याद करा दिया, हम भी भूल गए, चलो दैट इज पास्ट, पास्ट इवन गॉड कांट चेंज पास्ट, चलने दो, कुछ नहीं होता फर्क।
0: आप तो खुशी होगी कि बला टली
1: है जी,
0: आप तो खुशी होगी कि गए।
1: मुझे क्या खुशी होगी, मेरी पार्टी के मेंबर थे, मुझे दुख हुआ इस बात का कि कुछ बहुत, जैसा कि आप कह रहे हो कि बहुत लोग, उन लोगों के साथ मैं बहुत क्लोजली फैमिली मेंबर के तौर पे हमने काम किया, उनके साथ पारिवारिक संबंध थे, लेकिन पता नहीं कैसे उनके मन में क्या आया, चलो भला होया लड़ नेड़ों छुट्टिया, उम्र ना बीती सारी, लगदी नालों टुटदी चंगी, बेकदरां दी यारी।
0: मुझे पता था कि भगवंत मान ना मेरी थोड़ी टांग खींचने वाले हैं, लेकिन इनसे पंगा लेना बड़ा खतरनाक है, पंगा लोगे उल्टा ही पाएगा, तो पंगा लेना ही नहीं है। आपको जो बोलना है आप बोलो, मैं अपने सवाल पूछूंगा आपसे हाजिर जवाबी में, तुकबंदी में, तो पंगा लेना ही नहीं है।
1: पता क्या है, ये भी पंजाबी है ना, इसके नानके पटियाला में है, तो इसको मुझे पता है, इसकी सारे पासवर्ड मुझे पता है इसके।
0: ये अलग से आप बोल रहे हो कि सबके पासवर्ड पता है, लोग बोलेंगे कि बिग ब्रदर इज वॉचिंग, की सरकार एकदम सब पे सीआईडी कर रही है। सीआईडी कर रही थी और आपके खुद के एमपी निकल गए, आपको पता नहीं चला क्या सीआईडी है आपकी?
1: हम तो काम की राजनीति करते हैं, हम अपने काम लेके जाएंगे 2027 में लोगों के पास, 5 साल के जो काम किए हैं। और अरविंद केजरीवाल ने 2020 की इलेक्शन से 2 महीने पहले टीवी पे आके बोल दिया था दिल्ली वालों को कि अगर मेरे काम पसंद आए तो वोट डाल देना, वरना ना डालना। ऐसा बोलने के लिए जिगरा चाहिए, वरना हर अभी तक मोदी जी कह रहे हैं, 12 साल हो गए उनको प्रधानमंत्री बने, अभी तक कह रहे हैं देश बचाना है, देश बचाना है, किससे बचाना है बता तो दो। 6-7 बार देश बचा चुके हैं, अभी भी वो देश बचाने के लिए विदेश गए हुए हैं, ठीक है ना। वो हम लोगों को तो कह रहे हैं कि विदेश यात्रा बंद करो, आप ब्याह शादी में सोना मत पहनो, आप तेल मोटरसाइकिल में गाड़ी में तेल मत डलवाओ, घर से काम करो, और खुद ही निकल गए उसी दिन ही, उधर नीदरलैंड चले गए, नॉर्वे चले गए।
0: उन्होंने बोला कि कोई ऐसी ट्रिप हो जिससे देश को फायदा हो उसमें जाओ, सिर्फ फिजूल में मत जाओ, छुट्टी मनाने मत जाओ, ये उनका
1: अच्छा
0: मैसेज।
1: हाँ बिल्कुल सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं 2 बार विदेश गया हूँ, 1 बार साउथ कोरिया और जापान, अभी नीदरलैंड और फिनलैंड। दोनों बार आके मैंने एक एक दिन की जितनी मीटिंग्स थी एम्बेसी ने करवाई, जो हमने की, पूरा ब्यौरा मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीवी पर पूरा ब्यौरा दिया, ये इनके विजिटिंग कार्ड हैं, ये फलां कंपनी के मालिक हैं, ये पंजाब में 200 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करने के लिए राजी हो गए, ये प्रधानमंत्री जी ने कभी विदेश से आके पार्लियामेंट में या फिर उनके किसी रिप्रेजेंटेटिव ने प्रेस को ये ब्यौरा दिया है कि जब हम गए थे

0: कि उनका रिप्रेजेंटेटिव मंत्री जी हैं उनके पास, वो प्रधानमंत्री के दौरे का पूरा ब्यौरा दे ऑपोजिशन को, देश को दे ब्यौरा कि हम जी इतने करोड़ के समझौते हुए हैं, पता ही नहीं चलता कि क्या करके आए हैं वहाँ, पता नहीं, और देशों के नाम नहीं पता। भाई साहब हमने भी ज्योग्राफी तो हमने भी पढ़ी हुई है, मतलब ऐसे ऐसे देशों में जाते हैं जिनका नाम ही नहीं सुना कभी, ओलंपिक भी देखते रहते हैं, वहाँ तो छोटे छोटे पपुआ गिनुआ चचुआ चिचुआ कनगेशिया बगलेशिया टकलपेशिया। और मैंने खबर पढ़ी पिछले दिनों, कहते जी पपुआ गिनुआ में गए हैं हम। अच्छा जी, पपुआ गिनुआ का सबसे बड़ा नेशनल अवार्ड प्रधानमंत्री को मिल गया। अच्छा जी, वेरी गुड। उनकी पॉपुलेशन कितनी है? कहते 9250। मैंने कहा इतने बंदे तो JCB देखने आ जाते हैं हमारे यहाँ, जहाँ 140 करोड़ रहते हैं राहुल, वहां क्यों नहीं रहते वो?
1: तो आपको क्यों पेट में दर्द हो रहा है अगर वो जा रहे हैं?
0: इतना भी तो एक, एक, एक साल ना कोरोना आ गया, वरना धरती के 3-4 चक्कर लगा चुके होते अभी तक। मतलब कोई फायदा तो हो। एक मिनट, इतने देशों में गए, प्रधानमंत्रियों के साथ जफ्फी डालते हैं, इधर तो ये तो मेरा दोस्त है, ये मेरा माई फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, एक भी मुल्क ने हमारा साथ दिया बताइए?
1: अमेरिका ने
0: साथ दिया? अमेरिकन तो अनाउंस किया कि बंद करवा दिया। बताइए एक मुल्क बता दीजिए, मंगोलिया जाने का क्या फायदा हुआ? मंगोलिया ने कभी साथ दिया? तुर्की ने उनको ड्रोन दिए, तुर्की गए, तुर्की ने ड्रोन दिए उनको। अभी भी हम किसके साथ हैं? पता नहीं कैसी जंग लगी हुई है ये खाड़ी मुल्कों की। अमेरिका ने हमला किया, हमला ईरान पर हुआ है, कुटाप्पा जो हो रहा है वो इसराइल का हो रहा है, बिल्डिंगें लेबनान की गिर रही हैं, बर्बाद दुबई हो गया, बेइज्जती इंडिया की हो गई, चढ़ाई पाकिस्तान की हो गई, ये क्या हो रहा है यार?
1: बेइज्जती क्यों हुई
0: है?
1: बेइज्जती क्यों हुई
0: कि पता नहीं हमारा रशिया से कहते तेल लेने की, मैं तो आपको इजाजत नहीं दूंगा, तो रशिया से तेल क्यों नहीं लेते अभी? वो अभी रशिया से तेल क्यों नहीं खरीद रहे?
1: काफी टाइम से तो ले ही रहे थे ना, अभी भी तो
0: 7 रुपए पिछले 10 दिन में 7 रुपए लीटर बढ़ा दिया, 2 रुपए का जब उठते हैं 2 रुपए 71 पैसे से बढ़ जाता है, जब सुबह जागते हैं आज सोएंगे किसी और रेट पे, कल जागेंगे किसी और रेट पे। तो आप रशिया से क्यों नहीं लेते? क्या डर है अमेरिका का? कोई अमेरिका का डर है? और अमेरिका क्या कह रहा है? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं भारत को मैं इजाजत देता हूं कि वो 1 महीना रशिया से तेल खरीद, इजाजत वो देगा? व्हाइट हाउस चलाता है। हम तो बिशप गुरु बनने चले थे, बिशप चेले बन गए हम, जो वो कहते हैं वही मानते हैं हम। क्या कमजोरी है ऐसी प्रधानमंत्री जी की के जो ट्रंप की इतनी बात माननी पड़ती है कि वो आधा घंटा पहले ट्वीट करता है, हम कहते हैं हाँ जी बंद हो गया ऑपरेशन।
1: आप ये भी तो देखो कि बाकी देशों में जितना तेल का दाम बढ़ा है खाड़ी में जंग शुरू होने के बाद, हिंदुस्तान में उससे बहुत कम बढ़ा है, और कई महीने तो बढ़ा नहीं था, अब भी बढ़ा है। जितना कि दुनिया के बाजार में तेल का दाम बढ़ा, उससे तो बहुत छोटा हिस्सा इंडिया में बढ़ा है।
0: देखो जिस तरीके से आप काउंटर कर रहे हो ना, ये तो वो बात हो गई। एक बंदे से किसी ने पूछा, कहते जंगल में अगर तू जाए तो तेरे पीछे शेर पड़ जाए, कहते जी मैं उसको गोली मार दूंगा, कहते तेरे पास कारतूस ना हो, कहता मैं बंदूक का बट मारूंगा उसको सर में, कहता बंदूक ना हो, कहता मैं चाकू निकालूंगा गला काट दूंगा, कहता अगर तेरे पास चाकू भी ना हो, कहता मैं जेब से लाल मिर्ची निकालूंगा शेर की आंखों में डाल दूंगा, कहता अगर तेरे पास लाल मिर्ची भी ना हो, कहता मैं भाग के ना एक पेड़ पे चढ़ जाऊंगा, कहता अगर शेर तेरे पीछे पेड़ पे चढ़ जाए तो। उसने कहा यार जवाब मैं बाद में दूंगा, पहले तू बता तू किसकी तरफ है, तू शेर की तरफ है या मेरी तरफ है?
1: मैं किसी की तरफ
0: नहीं। मैं मोदी जी के खिलाफ कोई बात बोलता हूँ काउंटर करने लग जाते हो?
1: नहीं मेरा काम है सवाल पूछना।
0: किसकी तरफ हो?
1: मैं, अरे क्यों मेरा काम है सवाल पूछना? मैं ये थोड़ी कि मान साहब छा गए, मान साहब छा गए, इसलिए थोड़ी
0: मैं कहना सवाल पूछो, सवाल जवाब को डिफेंड करना थोड़ी
1: सी काम है। अरे सर तो इसीलिए तो इंटरव्यू बनता है ना, फिर मैं बैटिंग करूंगा आप बॉलिंग करोगे, मैं आप बॉलिंग करोगे बैटिंग करूंगा।
0: तो चलो मुझे ये बता दो सिलेंडर की लाइनें लगी हुई हैं। बंगाल की इलेक्शन में अमित शाह जी ने कहा था भारत के पास तेल का प्रॉपर जो स्टॉक है, LPG का प्रॉपर स्टॉक है, कोई तेल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। बंगाल इलेक्शन का रिजल्ट आया तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं बहुत बुरे दिन आने वाले हैं और ये आप तेल की जो है कीमतों का सामना करना पड़ेगा। अब आपको हर बात हर कमजोरी अब उस जंग के नाम लगाएंगे, उस जंग के कंधे पर धर रख के अभी चला रहे हैं। हम भी पूछ रहे हैं, नेशनल लेवल की पार्टी हमारी, हम पूछ रहे हैं कि आपने आप हमें बता दीजिए ना कि तेल कितने दिन का है। आप कहते हैं मैं अपने काफिले में से 2-3 गाड़ियां कम कर दूंगा, तुम आप घर से मत निकलो, तुम ये ना करो, सोना सोने की आपने बोल दिया कि सोना मत खरीदो, कितने लोग बेरोजगार हो गए जी, कितने लोग मतलब ये प्रधानमंत्री का बयान होना चाहिए सोना मत खरीदो।
1: कौन बेरोजगार हुआ
0: है जी?

0: जो सोने की दुकानों वाले
1: बिक्री कम होगी सर, बेरोजगार। अब ज्यादा अतिशयोक्ति मत करो।
0: प्रधानमंत्री कहेगा कि सोना मत खरीदो, पहले कहते थे ये मत खाओ, फिर कहते भी ये मत पहनो, आपके घर के फ्रिज तो चेक करने आ जाते हैं कि क्या क्या खा रहे हो। तो ये तो गलत बात है ना, मतलब डेमोक्रेसी है अगर बिगेस्ट डेमोक्रेसी।
1: ये बड़े स्मार्ट है, ये ले गए हमें पूरी दुनिया की सैर कराने के लिए। पंजाब में इलेक्शन होने वाला है, आप जा रहे हो गल्फ वॉर की। अच्छा बताओ ये कि एक जो बहुत बड़ा मुद्दा बनता है वो ये कि भगवंत मान एक केवल मुखौटा है, मास्क है। आरोप ये लगता है कि सरकार अरविंद केजरीवाल चलाते हैं, जब से उनकी दिल्ली की सरकार गई तब से ये चार्ज लगता है कि सुपर सीएम वो है, पर्दे के पीछे से क्या करना है क्या नहीं करना ये फैसले अरविंद केजरीवाल ने।
0: नहीं वैसे मुझे नेशनल पार्टी है तो हमारे भी जो जो पंजाब का प्रभारी होगा दिल्ली से आते हैं मनीष सिसोदिया हैं, ठीक है ना। अब कांग्रेस है तो मल्लिकार्जुन खड़गे मोगा से हैं, तो मुझे बताइए जो जो पहले हरीश चौधरी आए थे वो बागा पुराना से थे, ठीक है ना। अभी जो बीजेपी के प्रभारी आते हैं नितिन नवीन क्या मतलब मलिकोड़ला से हैं, तो मतलब नेशनल पार्टी हमारी भी, हमें नेशनल पार्टी कंसिडर करो। अब हमारे भी तो वो हाँ डिसीजन मेकिंग में कभी उन्होंने कभी भी इंटरफेयर नहीं किया।
1: सच बताओ,
0: मैं आप लोग बता देंगे सच 2027 में, फिर आप ही कहोगे ये देखिए रुझानों में आम आदमी पार्टी ने मतलब बहुमत हासिल कर लिया है, रुझानों में बहुत बहुमत हासिल कर लिया। आप कहोगे, आप शर्त लगा लो उस दिन की तरह, मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ।
1: पंजाब के सरकार के जो फैसले होते हैं, अगर 100 फैसले होते हैं उनमें अरविंद केजरीवाल कितने फैसले लेते हैं, भगवंत मान कितने फैसले लेते?
0: सारे फैसले पंजाब के सीएम लेते हैं
1: और पीछे बताते कितने हैं कि ये करो वो करो।
0: नहीं अगर अगर वो करेंगे भी मैं आपको क्यों बताऊंगा फिर। मुझे ये बताइए मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है?
1: मोहन यादव।
0: मोहन यादव किसके नाम पे लड़े थे?
1: मोदी जी के नाम।
0: ना लाडली लाडली बहना किसकी थी?
1: शिवराज
0: चौहान। उसके नाम पे लड़े, उसको ले गए उधर, चलो जी पता नहीं कौन। राजस्थान में जिससे पर्ची खुलवाई थी वो कौन थी? वसुंधरा सिंधिया। उसके नाम पे लड़े, उसी से पर्ची खुलवाई।
1: उनके नाम पे नहीं लड़े,
0: मतलब
1: काम ऐसे ऐसा तो बीजेपी पार्टी के तौर पे लड़ी ना।
0: बीजेपी विदाउट फेस जाती है, हम फेस के साथ जाएंगे। जो अगर फेस लोगों को पसंद आएगा तो ही वोट डालेंगे ना। तो फिर अगर अगर उन्होंने कोई और फेस लगा रखा है मेरे पे तो लोग कैसे यकीन करेंगे? बिल्कुल गलत बात है, प्रोपेगेंडा गलत हो रहा है। दिल्ली और पंजाब हम आपस में पार्टी, जो मैं तो गुजरात भी जाता हूँ, मैं भी गुजरात जाता हूँ, गुजरात प्रचार करने के लिए जाते हैं। हम अच्छी अच्छी स्कीमें जो पंजाब की गुजरात वालों को भी बताना है। हमारे पास 5 MLA गुजरात में भी हैं, 1 डोडा में जम्मू कश्मीर में भी है, 4 हमारे MLA गोवा में भी हैं। हमारी नेशनल पार्टी है तो हमें भी नेशनल पार्टी कंसिडर करो ना। हमारे फैसले भी कई बार हम दिल्ली बैठ के भी करते हैं फैसले, हाई कमांड है, PAC है, प्रॉपर पॉलिटिकल पार्टी है, हम NGO थोड़ी हैं अब। तो इसलिए ये मेरे ख्याल में पंजाब के लोगों के लिए मुद्दा नहीं है।
1: इसका एक काउंटर है, वो ये कि पहले अरविंद के, आप लोगों ने सबने सुना ही होगा कि पहले अरविंद केजरीवाल बहुत हावी हो रहे थे, आजकल भगवंत मान थोड़ा पुशबैक कर रहे हैं। ये दूसरा
0: आप ही मुझे पीछे कर लेते हो, आप ही पुश कर लेते हो, आपकी खबरों में होता है ये, ऐसा है नहीं। पंजाब सरकार स्मूथली चल रही है और लोग पंजाब के खुश हैं। 60 साल बाद पानी मिला है कहीं कहीं पर आके, और पंजाब के लोग जो हैं वो इतने खुश हैं कि इतने वादे जो पार्टी ने किए और सारे वादे पूरे करके पार्टी बैठी है। अब तो हम वादों के अलावा काम कर रहे हैं, वादों के बिना काम कर रहे हैं।
1: आपने ड्रग्स पे एक बड़ा कैंपेन शुरू किया, लेकिन मैं लोगों से पूछ रहा था कि जो एंटी ड्रग्स कैंपेन है वो कैसा चल रहा है, तो फीडबैक ये मिला कि जो ड्रग पेडलर है वो तो पकड़ा जा रहा है, लेकिन जो मास्टर माइंड है, जो सरगना है, वो नहीं पकड़ा जाता है।
0: बिल्कुल ऐसा है कि हमारे अभी कन्विक्शन रेट हमारा 87% है, पंजाब देश में सबसे ज़्यादा है। ये एक बहुत बड़ा एक इनका जाल बिछा हुआ है। वो क्या करते हैं, जो एडिक्टेड हैं उनको ही ज़्यादा देते हैं कि 2 ग्राम आपके लिए, 7 ग्राम आपको टोटल दे रहे हैं, 4 ग्राम आप 2-2 ग्राम के लिए आप आगे 2 ग्राहक बनाओ, आपका फ्री दे देंगे। ऐसे चेन रिएक्शन चलता है। हम उसमें बहुत कामयाब हो चुके हैं यहाँ तक पहुँचने में। अभी एक ड्रग का सरगना जेल में रह के आया 6-7 महीने, ठीक है, अभी जमानत हुई है। NDPPS एक्ट को हम और स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, हमारी होम मिनिस्ट्री के साथ बात चलती रहती है। अब युद्ध नशे विरुद्ध जो जब चलाया है, प्रॉपर्टीज़ उनकी डिमोलिश की हैं, तो अब शरेआम बिकना बंद हो गया। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही बंद हो गया, शरेआम बिकना बंद हो गया, लेकिन जो चोरी या कुछ ऐसे इस तरह से चलता है जो पाकिस्तान से आता है, ये नेशनल प्रॉब्लम है। दिस इज़ नॉट ए पंजाब इशू के कल्ले पंजाब का इशू।
1: मुझे याद है जो हमने इंटरव्यू किया था आपका संगरूर में पिछले असेंबली इलेक्शन से पहले, मैं उसको देख रहा था, यहाँ आने एक ओपन एयर गाड़ी में आप घूम रहे हो, आपके बाजू में हम लोग खड़े होकर इंटरव्यू कर रहे हैं, और आपने कहा कि अगर मुझे सरकार में आने का मौका मिलता 3 महीने के अंदर में ये जो उड़ता पंजाब की जो प्रॉब्लम है, पंजाब में ड्रग्स की प्रॉब्लम है, उसको फिक्स कर दूंगा, ये आपने वादा किया।
0: नहीं पते, इसमें कई लेयर में काम किया हमने। अगर हम सप्लाई चेन तोड़ते हैं तो लाखों वो जो एडिक्टेड हैं, वो तो मरीज हैं ना, उनको तो हॉस्पिटल में होना चाहिए, वो विद्रॉल सिम्टम में आएंगे, वो तड़पेंगे, फिर उनके लिए हमने रिहैब सेंटर बनाए, पहले रिहैब सेंटर को अपडेट किया, उसके बाद हमने पंजाब पुलिस में बहुत सी बदलियाँ की। हमने 20-20 साल से वहीं पुलिस वाले तैनात थे, उनकी यारियाँ रिश्तेदारियाँ वहीं पे थी, वो भी मिले हुए थे, लोग ड्रग स्मगलर को जो उनके गांव में बेचने आता था उसको थाने में पकड़ा के जाते थे, लोग बाद में गांव पहुंचते थे, वो पहले पहुंच जाता था, थाने से जमानत हो जाती थी, कानून थोड़ा कमज़ोर था। अभी हमने कानून में भी थोड़ा सोध अमेंडमेंट की है, तो उसके बाद फिर हमने सप्लाई चेन तोड़ने का फैसला किया है। अब सप्लाई चेन पे हम लगे हुए हैं, और होपफुली हम स्पोर्ट्स या कुछ ऐसी एक्टिविटियाँ, नौकरी यूथ को हम, ताकि वो दोबारा ना उस तरफ जाएं।
1: एक जो दूसरा आरोप लगता है वो ये कि यहाँ पे एक्सटॉर्शन के बड़े फोन आते हैं, उद्योगपति कहते हैं कि कोई भी, मतलब गोल्डी ब्रार हो, लॉरेंस बिश्नोई, गैंग के नाम पर, पता नहीं उस गैंग से फोन आ रहे हैं।
0: पहले वाली सरकारों ने भी इसमें बहुत योगदान दिया है, उन्होंने गैंगस्टर अपनी इलेक्शन के लिए इस्तेमाल करके उन्होंने छोड़ दिए, है तो हमारे ही लड़के हैं वो, फिर वो ना तो दलदल में फंस गए, ना तो निकलने के लायक रहे कि हम इधर से कहाँ कैसे निकलें। तो फोन आते हैं, लेकिन हम लोगों को अब यकीन है, लोग पुलिस के पास आते हैं, हमने कुछ टोल फ्री नंबर भी दिए हुए हैं कि अगर आपको कोई कॉल आती है हमें बताइए, कोई आईपी नंबर या कोई उसका जो भी, ज़्यादातर पुर्तगाल, दुबई, मलेशिया से भी हम पकड़ के लाए हैं कुछ।
1: नहीं पर आप ये सोचिए ना, लोगों को ऑब्वियसली आपकी पुलिस पे या लॉ एंड ऑर्डर पे शक है, इसीलिए वो एक्सटॉर्शन को दे भी रहे, वरना पुलिस पे विश्वास हो
0: नहीं
1: तो वो दे ही ना किसी को पैसा।
0: ये ड्रग और ये एक्सटॉर्शन के फोन, ये क्या हमारी सरकार में शुरू हुए? उन्होंने बढ़ाया, हम तो कंट्रोल कर रहे हैं, हमारी, हम कोई पुष्टपनाई नहीं करते कि हमारी फलां फलां गैंगस्टर के साथ कोई बातचीत होती है। ये तो अकाली दल तो गैंगस्टर को टिकटें दे रहा है, अभी तरन तारण में क्या किया था, गैंगस्टर के रिश्तेदार को टिकटें दी थी, आज भी गैंगस्टर को टिकटें देने में सबसे ज़्यादा अकाली दल है, अकाली दल का नाम लेके वो करते हैं कि हम अकाली दल, और उनका खुद के नाम लेके कत्ल किए हुए हैं, कि कत्ल करने के बाद उसकी छाती पे पांव रख के जिंदाबाद के नारे लगाए हुए हैं। तो उन्होंने जो कांटे बोए थे उनको हम चुग रहे हैं। मेरा ना तो किसी बस में हिस्सा है, ना किसी रेत की खड्ड में हिस्सा है, ना किसी ढाबे में हिस्सा है, ना होटल में हिस्सा है, ना समोसे की रेड़ी में हिस्सा है। मेरा हिस्सा है तो पंजाब के 3.25 करोड़ लोगों के दुख सुख में हिस्सा है, अदरवाइज हमें तो आने की ज़रूरत ही नहीं थी पॉलिटिक्स में। हम क्या कोई इनसे कोई पैसा कमाने आए हैं, हम इस धंधे को प्रोफेशन बनाने नहीं
1: था कि हम करप्शन को ख़त्म कर देंगे, लेकिन अगर आप लोगों से बात करो पंजाब में, उनसे बात करो, कहते नहीं पेटी करप्शन तो अभी भी है, अभी भी आरटीओ हो, लैंड रजिस्ट्री हो, पैसे तो देने पड़ते हैं, ऐसा नहीं कि भगवान मान के राज में
0: 70 साल का उलझा हुआ ताना है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। हमने बहुत अफसर सस्पेंड किए हैं, विजिलेंस के चीफ तक सस्पेंड किए हमने, ये फैसले लेने के लिए दलेरी चाहिए, जिगरा चाहिए इसके लिए। तो करप्शन है या जो जितनी भी सोशल इवल्स हैं उनको ख़त्म करने में हम लगे हुए हैं, हमारी नीयत पे खोट नहीं है। सफलता देर मिले, सवेर मिले, अंधेर मिले, लेकिन मिलेगी, लेकिन हम नीयत से काम कर रहे हैं।
1: अच्छा एक सवाल है, वो सवाल लोगों के जहन में है, अब आप बुरा मत मानना, लेकिन सवाल तो पूछना पड़ेगा। सवाल वो है कि जैसे जब आप असेंबली में आते हैं, आपके अपोनेंट्स कहते हैं कि आप शराब पी के आए, ये चार्ज आपका असेंबली इलेक्शन में भी लगा, आप पंजाब की जनता को, जो लोग इस वक्त देख रहे हैं उनको बताइए कि ये जो चार्ज है बार बार भगवान मान पे,
0: उनके पास और कोई मुद्दे नहीं है, उनके पास और इल्ज़ाम क्या है? मुझे 12 साल हो गए, 2014 में पहली बार जीता था मैं, 2012 में पॉलिटिक्स में आ गया था, एक इलेक्शन पहले भी लड़ा, 14 साल हो गए, 14 साल से वो यही कह रहे हैं कि भगवंत मान तो दिन रात शराब पीता है। आपका कोई दोस्त, आपका कोई मित्र, आपका रिश्तेदार कोई जो 14 साल से लगातार शराब पी रहा है दिन रात, वो जिंदा है? आपका बता दो भाई साहब, कोई जिंदा है क्या? मतलब मैंने मंडी गोविंदगढ़ से लोहे का लिवर लगवाया हुआ है, ठीक है, ये उनका, उनके पास और कुछ है ही नहीं ना। फिर इल्ज़ाम लगा दो, ये तो ऐसे मैं बोल देता हूँ, कौन सा कंडेम ही करेगा बाद में, अगला बंदा सफाई देता रहेगा, है मैं बोल देता हूँ वो ड्रग लेके आता है, कोई कहता है सुखबीर बादल अफीम खाता है, बोलते हैं उसको सुखा अमली बोलते हैं, वो बताए ठीक है ना, वो कहते

0: जब भी कोई गलत मलत बयान देता है, मैं अपने पिता को पिता समान तो नहीं कहता ना, वो तो अपने पिताजी को कहता है मेरे पिता समान है। पिताजी को उठ के बोलना पड़ा था पिता समान नहीं हूं, पिता हूं। उनका एक कांग्रेस का प्रधान है, वो 12-5 48 बोल रहा है, ठीक है ना, वो मैथ कोई पता नहीं किधर लेके जा रहा है, वो क्या खाते हैं जी मुझे पता नहीं चल रहा। तो ये तो पर्सन, वो मेरी माँ के बारे में बोलने लगते हैं, फिर मेरी बहन के बारे में बोलते हैं, मेरी वाइफ के बारे में बोलते हैं, इनके पास और कुछ है ही नहीं। गालियां देते रहते, लोग कहते हैं यार इलेक्शन आने दो पता चल जाएगा। इससे पहले भी 2017 और 2022 में यही मुद्दा बनाया था, तो लोगों ने, पहली बार हुआ है कि लोगों ने 92 out of 117 दी। इतना बड़ा मैंडेट पहले किसी पार्टी को
1: नहीं। चैलेंज किया कि ब्लड टेस्ट करा लो,
0: क्यों करा लें उनके कहने पे, वो करवा लें, वो तो स्मगलर हैं, उनके उनके पिताजी तो सोने के बिस्कुट स्मगलिंग करते थे, वो तो उनका करा लेते हैं ब्लड टेस्ट, हम जो ड्रग बांट रहे हैं देश में। सो इसलिए ये इनका सिर, ये राजनीति या ये मुद्दा नहीं है पंजाब का। मुद्दे का पता तब चल जाएगा ना जब लोगों ने मुझे बोल दिया कि भगवंत मान हम तुम्हें वोट नहीं देंगे, तू काबिल नहीं है पंजाब चलाने के, 2027 में पता चल जाएगा। आ जाएं बात चल, पता चल जाएगा 2027 में क्या रह गया। नवंबर दिसंबर में कोर्ट लग जाएगा, यूपी के साथ होती है इलेक्शन, इसीलिए यूपी में कुछ ज़्यादा राउंड होते हैं, हमारे फरवरी के फर्स्ट वीक में इलेक्शन होती है, तो पता चल जाएगा क्या फरवरी
1: में। पश्चिम बंगाल में जीत के बाद बीजेपी बड़ी कॉन्फिडेंट है, उसको लग रहा है कि जैसे हम बाकी स्टेट्स में जीत रहे हैं पंजाब में भी बीजेपी कुछ कर सके।
0: कैसे जीतते हो आपको तो पता होगा।
1: नहीं नहीं वहाँ पे इतना बड़ा बहुमत आ,
0: नहीं नहीं आप तो बिहार भी जाते रहे हैं उनके,
1: तो यहाँ पश्चिम बंगाल भी गया था।
0: हाँ हरियाणा में भी थे। कैसे जीतते हो
1: आप बताओ, कैसे जीते?
0: पहले लड़ाई करवाते हैं दो दो दो समुदाय में, फिर एक समुदाय की तरफ हो जाते हैं, डराते हैं, बम धमाके भी होते हैं, दंगे भी होते हैं, नूह में दंगे हुए, मणिपुर जल गया, बिहार में लड़ाई हुई, बंगाल में कत्ल हुए, तो इसका मतलब पंजाब में भी ऐसा कराएंगे?
1: क्योंकि बीजेपी की स्ट्रेटजी ऐसी लग रही कि इस वक्त एक सिख फेस को वो आगे करेंगे, वैसे ही आपके पार्टी के कुछ राज्यसभा एमपीज आ गए और वो अभी गांव में उतनी नाराजगी नहीं है जैसे पहले दिक्कत हो रही थी कैंपेन करने में, अब वैसा नहीं है जैसे पहले था। बीजेपी को लग रहा है कि इस बार पंजाब में वो अच्छा कर सकता है। आप इस स्ट्रेटजी को कैसे देखते हैं, क्या लिख रहे हो आप
0: बीजेपी को 2027 में? पहले हमारा रिकॉर्ड है आपके साथ ऐसा लिखने का।
1: लाओ एक कैमरा लाओ भाई, कैमरा कहें, कैमरा लाओ, कैमरा लाओ, कैमरा लाओ, कैमरा लाओ, कैमरा लाओ, क्या लिख रहे हैं आप? कह रहे हो कि बीजेपी को 2027 में एक से दो सीट,
0: वो भी पठानकोट साइड, साइन भी कर दिए।
1: क्यों आपको लग रहा है कि ऐसे आएंगे?
0: मैं लोगों में रहता हूं जी, ये लिख लेना, रोक लो, रोक लो। और कांग्रेस का, कांग्रेस का लिख दूं?
1: कांग्रेस का भी लिख दूं। किन्नी दे रहे हो तुसी कांग्रेस को?
0: सिंगल फिगर।
1: ठीक ठीक लगा लियो थोड़ा जा,
0: मैं करता हूं 1-9
1: कांग्रेस को।
0: अकालियों साइन इसके नीचे भी कर दूं जाए, ऊपर वाले चल जाएंगे,
1: एक ऑटोग्राफ चल जाएगा। हाँ। नहीं वो अकालियों को जीरो
0: ले लो,
1: ठीक ठीक तो लगा लो, पूरी फैमिली गायब।
0: देखिए भाई इतना तो मुझे घर पे पड़ता है, इतना ही रेट लगेगा।
1: अपना तो बताया नहीं आपने पिछली बार,
0: बाकी जितनी बच गई वो दे दो
1: सारी।
0: हाँ
1: आपका मेन कंपटीशन आपके हिसाब से अगले इलेक्शन में किससे होने, ये अकाली को जीरो दे रहे हैं, कांग्रेस को 1-9, बीजेपी को 1-2। ऐसा ही दिल्ली के इलेक्शन में भी आम आदमी पार्टी ने किया था, लिख के लिख लो, लिख के लिख लो, फिर दिल्ली में क्या हुआ?
0: एक बार लिख के भी दिया था तो आपको आज तक पे, श्वेता ने किया था ना कि चन्नी भी हारेगा दोनों जगह से, कैप्टन भी हारेगा, सिद्धू भी हारेगा, मजीठिया भी हारेगा, बादल दोनों बाप बेटा हारेंगे, मनप्रीत बादल भी हारेगा, हारे ना।
1: पर उस टाइम पे आप ऑपोजिशन में थे, अब आपका जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है उसका टेस्ट है ऑपोजिशन में,
0: ठीक है ना, इसका टेस्ट का रिजल्ट तक तो वेट करो, अभी क्यों कंडेम कर रहे हो
1: इसको? सेव कर लेना भाई,
0: सेव पे वीडियो में आ गया,
1: सेव होगा उस दिन निकालेंगे ये,
0: सेव हो गया।
1: हां सेव हो गया, हां कैमरे पे भी आ गया,
0: हां कैमरे पे सेव हो गया,
1: मैं भी सेव कर लूंगा।
0: तो अगर आप उस समय एनडीटीवी में हुए तो मेरे इंटरव्यू करना
1: यार, अभी तो आया हूं ये बताओ पंगा कर रहे हैं।
0: कहीं भी हुए, कहीं भी हुए, तरक्की हो सकती है आपकी।
1: जो प्लस इस साल तरक्की करनी तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो भी हो आप तो वैसे सब मिक्स एंड मैच।
0: नहीं, मैं इस समय आम आदमी पार्टी की तरफ से लिख रहा हूँ और मैं इंटरव्यू भी आम आदमी पार्टी की तरफ से दूंगा। आप जब जहां भी होंगे इंटरव्यू आपके साथ करना ही करना। मैंने
1: डन इंटरव्यू होना चाहिए, वो जरूरी भी है। नहीं तो आपको लग रहा है कि बीजेपी के कुछ पहले से बेहतर करने के
0: पब्लिक, बीजेपी पब्लिक में कब गई है? बीजेपी जितना एंटी पंजाब बीजेपी चल रही है इस वक्त। कभी कहते हैं चंडीगढ़ को हम विधानसभा बना के चंडीगढ़ को दिल्ली की तरह जूटी बना देंगे, पंजाब से छीन लेंगे। कभी कहते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ हमारी है, वो उसका उसका सेनेट जो है हम बदल देंगे। कभी कहते हैं बीबीएमबी के द्वारा हम भाखड़ा नंगल का पानी हरियाणा राजस्थान को देंगे। कभी कहते हैं पंजाब की झांकी हम नहीं दिखाने देंगे। आरडीएफ का हमारा पैसा 9,000 करोड़ हमारा रोक रखा है, हैं बैट का हमारा एनएचएम का नेशनल हेल्थ मिशन का वो पैसा नहीं दे रहे। कोई तो ऐसा
1: तो
0: काम हो
1: नहीं है फिर पंजाब के लिए। अगर डबल इंजन सरकार बन जाए तो पैसे आने में प्रॉब्लम नहीं होगी, जो आप बोल रहे पैसे नहीं आ रहे?
0: नहीं नहीं, जो हमारे बन रहे हैं हमारा राइट है, जो हमारा आरडीएफ का पैसा है वो किस मुंह से आके वोट मांगेंगे? और मुझे ये बता दो बीजेपी में बीजेपी का नेता कौन है? सारी कांग्रेस जो है कड्डी वड्डे छड्डे सब इतने इधर आ गए। कांग्रेस का जो मुख्यमंत्री था कैप्टन अमरिंदर वो बीजेपी में माइग्रेशन है ना। मनप्रीत बादल जो वित्त मंत्री था माइग्रेशन बीजेपी में। रवनीत बिट्टू जो कांग्रेस में था माइग्रेशन। फतेह जंग बाजवा प्रताप बाजवा का सगा भाई माइग्रेशन, ठीक है ना। सुनील जाखड़ उनका प्रधान था माइग्रेशन। तो मतलब कौन है उनके पास जो अपना है?
1: नहीं नहीं, बट यही तो माइग्रेशन से पश्चिम बंगाल में सरकार बन गई, वो शिवेंदु अधिकारी
0: तृणमूल से आए। पश्चिम बंगाल और पंजाब में फर्क है ना, ये अगर ये जिताने वाले होते तो 2022 में ये कांग्रेस में थे, कांग्रेस को जिता देते। ये सारे मनप्रीत बादल भी कांग्रेस में था, कैप्टन भी कांग्रेस में था, सुनील जाखड़ भी कांग्रेस में था, तो ये उस समय कांग्रेस को। ऐसे थोड़ी होता है कि लोग ऐसे चेहरा देखेंगे और वोट डाल देंगे। पंजाब के लोग हैं पॉलिटिकली अवेयर हैं।
1: नहीं, क्योंकि बीजेपी की होप ये है कि सिखों में नाराजगी थोड़ी कम हो गई है, हिंदू समाज उनके साथ है, और अगर उनका
0: ये ड्राइंग रूम में बैठ के बातें नहीं होती भाई साहब। गाँव में चलना, कभी गाँव में चल के पूछना लोगों को क्या हाल है, ठीक है ना। और पंजाब के लोग किस बात की तारीफ कर रहे हैं, किसको चाहते हैं, ठीक है ना। ये कांग्रेस में 6 मुख्यमंत्री हैं इस वक्त, उनके वॉलंटियर काम है मुख्यमंत्री ज़्यादा हैं। अंधेरे में ईंट मारो कांग्रेस के मुख्यमंत्री को लगती है जाके, ठीक है ना। उनका कांग्रेस का तो सीधा साहब है, रंधावा की भाजपा से नहीं बनती, भाजपा की जाखड़ से नहीं बनती, ठीक है ना। नहीं जाखड़ तो चलो है नहीं, रंधावा की भाजपा से नहीं बनती, भाजपा की चन्नी से नहीं बनती, चन्नी की नवजोत सिद्धू से नहीं बनती, नवजोत सिद्धू की किसी से भी नहीं बनती। वो तो कटाक पटाक वो तो चल रहा है काम, इनका है नहीं कुछ।
1: सिद्धू की कमेंट्री ज्यादा स्ट्रांग है या भगवंत मान की?
0: क्या
1: सिद्धू की कमेंट्री और कॉमेडी ज्यादा स्ट्रांग है या भगवंत मान की?
0: नहीं भगवंत मान, मैं कब कह रहा हूँ मैं कॉमेडी करता हूँ, मैं तो पॉलिटिकल स्टायर करता हूँ, व्यंग करता हूँ, ठीक है ना। सच कई बार चीजों को बताने का तरीका कोई और होता है, ठीक है ना। तो मेरे तरीके को लोग पसंद करते हैं, मैं क्यों फिर बदलूं उस तरीके को? मेरे से लोग उम्मीद करते हैं कैसे बोलो, और जो भी मैं बोलता हूँ उसमें कोई ना कोई बात होती है, कोई ना कोई काम हो। देखो
1: नहीं, पर जब सरकार के बाहर हो तब सटायर में ज्यादा मजा आता है, सरकार के अंदर रह के तो सटायर करना मुश्किल हो जाता है ना।
0: नहीं क्यों, मैं कर तो रहा हूँ अभी, कर रहा हूँ।
1: नहीं नहीं, आप कर रहे हो बाकी ऊपर, पर सरकार के अंदर रहते हुए अपने काम को एक्सप्लेन करते वक्त तो सटायर करना मुश्किल हो जाता है।
0: नहीं नहीं, मैं काम कर रहा हूँ नाल, जो मेरे मेरे पे कोई वो करते हैं कोई, वो असल में ना वो मेरी पिच पे आके खेलने लगते हैं।
1: हाँ हाँ,
0: कॉमेडी उनको करनी नहीं आती, वो इस चक्कर में कुछ ना कुछ और बोल जाते हैं, गलती हो।
1: इसीलिए तो मैंने जवाब ही नहीं दिया, मैंने बोला इनको जो बोलना है बोलने दो, इनसे भिड़ना तो बड़ा खतरनाक है।
0: आप बचाव हो गया आपका,
1: महंगा ही पड़ेगा, छोड़ दो इनको, मारने दो सिक्सर, बोलो वाह वाह वेल डन, छोड़ दो भाई।
0: लेकिन मैं एक पूछना चाहता हूँ, जो उन्होंने सवाल पूछे, आप ऑडियंस को पूछना चाहता हूँ, चाहे वो टीवी पे देख रहे हैं चाहे आप लाइव में, आपको आज वाली इंटरव्यू में कुछ तो अलग से लगाना, कुछ तो बात कुछ अलग से हो रही है ना, कि नहीं तो सवाल
1: आप अपने सवाल आप को पहले फिक्स होते हैं, मुझे मार्क दे रहे हो।
0: नहीं नहीं नहीं, तो क्या होता है कि सवाल भी फिक्स होते हैं, वो वही फॉर्मल सा सवाल फॉर्मल सा जवाब, बोर हो जाते हैं सब लोग। लेकिन अब हमारे में केमिस्ट्री हमारी ऐसी है कि जो इन्होंने पूछा मैं उसके दो दो तीन तीन जवाब दिए, इन्होंने भी काउंटर किया, मुझे भी अच्छा लगा कि कोई सवाल ऐसा नहीं है कि जो इन्होंने पहले मुझे दो दिन पहले भेज दिया हो फिर मैं उसकी प्रिपरेशन, स्पॉन्टेनियस जो बात दिल से निकलती है वो असर।
1: सवाल तो ना इन्होंने पूछे ना हमने भेजे ना हम भेजते हैं, इनमें से किसी ने पूछे भी नहीं, और ऐसे सवाल अगर पूछते पहले बता दिए तो क्या पता आते भी नहीं, तो ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। तो इन्होंने सारे सवालों के जवाब बड़े अच्छे से दिए। तो पद्मजा जोशी हमारी मैनेजिंग एडिटर सवाल लेंगी। पद्मजा,
2: आपका ये ईवीएम से जो झगड़ा है कब खत्म होगा? अब उन्होंने उसी ईवीएम ने आपको पंजाब में जिताया, दिल्ली में बार बार जिताया, गुजरात में आपके एमएलए हैं, गोवा में आपके एमएलए हैं, और तो और छोड़िए कश्मीर में भी एक एमएलए आपका आ गया है उसी ईवीएम से चुन के, उसी कश्मीर जहां उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि एज फार एज आई एम कंसर्न्ड आई डोंट थिंक ईवीएम में कोई खराबी है, किसी के पास प्रूफ है तो दिखा ले। वही ईवीएम आपको राज्य दर राज्य जिताता है, पर फिर आप कहते हैं कि ईवीएम की फिक्सिंग करके बीजेपी जीत।
0: देखो पता क्या है, पूरे देश में ईवीएम पर कई पार्टियों के सवाल हैं, पार्टियों को शक है, तो इलेक्शन कमीशन को ये बात क्लियर कर देनी चाहिए सभी को बुलाकर। एसआईआर पे शक है कि जी इतने जो नकली वोट हैं वो बनाए जा रहे हैं, असली वोट काटे जा रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो इलेक्शन कमीशन बीजेपी का एक विंग क्यों बन जाता है? इलेक्शन कमीशन प्रो बीजेपी क्यों हो जाता है? नहीं जी तो ऐसे होगा, नहीं जी तो हम तो ऐसे, तो उससे शक हो जाता है। फिर अगर बीजेपी को कोई डाउट ही नहीं है, जब भी ईवीएम पर कोई सवाल कोई पैदा होता है तो बीजेपी ईवीएम के पक्ष में क्यों आ जाती है? वो कहे कि हाँ जी चेक करा लो, हाँ जी हमारे सामने चेक करवा लो, हम हमारे पास तो इतना बड़ा नेता है जिसके नाम से हम जिसकी लहर से हम जीत जाते हैं। इसलिए मैं इलेक्शन कमीशन को ये कहता हूँ कि वो उन पर भी उनके काम पर भी शक हो गया है। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स तो पहले ही थे, अब जुडिशरी और इलेक्शन कमीशन पर भी शक हो गया है। तो इतनी बड़ी डेमोक्रेसी अगर बचानी है तो उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा सभी पार्टियों को, अकेले हम नहीं, उसमें और भी छोटी छोटी पार्टियां हैं जो शक करती हैं कि हमें इतने वोट तो यहाँ पढ़ने चाहिए थे, हमारा तो एक वोट भी नहीं निकला, कम से कम एजेंट ने तो वोट डाला होगा ना। तो इसलिए अगर ये कोई शक है तो इसको क्लियर करना चाहिए।
3: आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप सरकार बना रहे हैं, अगले चुनाव में आप जीत कर आ रहे हैं, लेकिन मैं इसके साथ में ये सवाल एक पर्सपेक्टिव के साथ एक इमेज के साथ जोड़ना चाहती हूँ। मुझे रामलीला मैदान की वो तस्वीर याद आती है जहाँ पर सोनिया गांधी और सुनीता केजरीवाल साथ साथ बैठे थे, इंडिया अलायंस की शक्ति का वो प्रदर्शन था बीजेपी के अगेंस्ट। इंडिया अलायंस का आज का सच क्या है? और खासकर तब अगर मैं ये सवाल आपसे इस सूरत में पूछूं, फ़र्ज़ कीजिए अगर आप पंजाब में चुनाव हार जाते हैं तो आम आदमी पार्टी के लिए अस्तित्व का संकट हो जाएगा, और ऐसे में इंडिया अलायंस क्या आपके लिए भी ज़रूरत नहीं जब आप यहाँ बैठकर कांग्रेस को तमाम क्रिटिसिज्म करते हैं?
0: इंडिया अलायंस में हम रहे हैं, लेकिन हमें मतलब हम या तो हम नहीं फिट बैठे या वो नहीं फिट बैठे, तो अब हम नेशनल पार्टी अलग से, अपना हमारा एजेंडा हमारी विचारधारा और है, उनका शायद काम करने का तरीका और है, वो उनको मुबारक हो। लेकिन दूसरी बात है कि आप कहेंगे अगर पंजाब हार गए, अगर तो फिर अगर होता है, लेकिन पंजाब में जितने हमने काम किए हैं, जितना पंजाब से हर रोज़ हमें फीडबैक आता है, पंजाब के लोग बहुत खुश हैं। पंजाब के लोग ये कहते हैं कि पहली बार हुआ है कि हम ये झूठे पर्चे थाने में या ये वो जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थी पुलिस की, इधर इधर ये कर दिया वो कर दिया, उससे हमें छुटकारा मिल गया, हमारे बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिल रही है, हमें अच्छा इलाज मिल रहा है, और बिजली पानी फ्री है, पंजाबी जो हैं वो मतलब मौजें कर रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा। और पंजाब ने पहला हरा रंग का पत्ता जब पूरे देश में पार्टी लड़ी, चार एमपी जिनमें मैं भी था, चार एमपी 2014 में, उसके बाद 20 हमारे आए विपक्ष में, पहली बार आए 17 में, एक एमपी जब फिर भी पार्टी इधर उधर थोड़ा बिखर गई थी तो संगरूर से फिर मैं जीता अकेला, उसके बाद 22 में बड़ा मार्जिन दिया। तो पंजाब जो है वो हमारी धरती गुरुओं पीरों फकीरों शायरों की धरती है, और नए इनकलाब को नई चीज़ को जल्दी अडॉप्ट करते हैं, हमें उम्मीद है कि पंजाबी हमारा दिल नहीं तोड़ेंगे।
1: ख़त्म करने से पहले अगर वो जो कॉमेडियन भगवंत मान है जो पूरे रूरल पंजाब में हिट हुआ, अगर वो इस सरकार को देख रहा है तो सरकार पे कॉमेडी क्या करेगा वो?
0: सरकार को
1: हाँ, अगर कॉमेडियन भगवंत मान हाँ। चीफ मिनिस्टर भगवंत मान पे कुछ कहने वाला हो या करने वाला हो क्या कहेगा?
0: जे मैं देखा अपने बल्ले तो कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं देखा अमला बल्ले तो कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं देखा तेरी रहमत बल्ले तो बल्ले बल्ले बल्ले।
1: बहुत खूब, बहुत खूब, समा आपने खूब बांधा। अब आपके काम पर पंजाब की जनता का क्या एक्चुअल फाइनल का रिपोर्ट कार्ड है वो 2027 में पता चलेगा, लेकिन हमारी उम्मीद यह है कि आप हमें और मौका देंगे आपके पास आने का, इंटरव्यू करने का.
0: एनी टाइम. हाँ, एनी टाइम. इलेक्शन के समय भी मिलेंगे.
1: हाँ,
0: उसमें वो आप गाड़ी में बैठ के करते हो ना इंटरव्यू, एक वो करेंगे,
1: वॉक तो टॉक करेंगे आपसे,
0: वॉक
1: मजा आएगा. नहीं, पर एक बार फिर से भी आएंगे, एक
0: बार सबमिट करेंगे. हाँ, मर्जी हो, पंजाब आपका है. पंजाब तो हॉस्पिटैलिटी के लिए जाना हुआ है, मेजबान पंजाबी तो जहाँ दुनिया.
4: सर,
0: कोई चांद पर भी अगर चले जाओगे तो पंजाबी एक आध मिल ही जाएगा आपको, तो पंजाबी तो पूरी दुनिया में मिलते हैं.
1: हम फिर से आएंगे पंजाब इलेक्शन से पहले, वॉक तो टॉक भी करेंगे और पंजाब में एक बड़ा समिट भी करेंगे. लेकिन आपने तमाम सवालों के जवाब दिए, एक भी बार नहीं कहा ये मत पूछना वो मत पूछना, और जैसे सवाल आपने देखे देखा कि हर तरह का सवाल पूछा भी गया जिसका आपने जवाब दिया. बहुत बहुत शुक्रिया भगवंत मान जी, बेस्ट ऑफ लक. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच.

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे
1: वेयर द सॉफ्टवेयर इंजीनियर मीट्स द कूल यूआई यूएक्स डिजाइनर मीट्स द गिफ्टेड कंटेंट राइटर टू क्रिएट द बिग ड्रीम द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी सो वेयर आर यू
2: भरोसा ऑन मोदी जी एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी मैनेजमेंट एंड अश्योरेंस ऑफ करेज गिवन बाय अमित शाह जी टू ऑल द पीपल वी आर विथ यू
3: इलीगल माइग्रेंट ये बांग्लादेशी घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है देश की जनता के लिए नहीं इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार
4: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड
5: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है तो रसगुल्ला किसका है ओडिशा का या बंगाल का
6: ओडिशा का है महाप्रभु जगन्नाथ की रसगुल्ला है रसगुल्ला दोनों की
7: आई थिंक इट विल बी गुड टू ब्रिंग बैक द कॉन्फिडेंस ऑफ इंडस्ट्री
8: द पीपल ऑफ केरला अंडरस्टूड द रियल पॉलिटिक्स ऑफ सीपीएम एंड आई लेफ्ट द डेमोक्रेटिक फ्रंट
9: And that kind of victory is truly astonishing. And I do believe it marks a return of the Congress with the kind of mandate to bring about radical transformation.
10: Economy, business, world, technology. Noise filtered, numbers decoded. Insights that rewire your worldview. From governance to growth. We connect the dots. Your daily edge, your global advantage. India Business Report with me, Gauri Dwivedi. Weeknights on NDTV Profit.
11: थोड़े में ज्यादा स्वाद ये हित तो है इसकी खास बात।
12: वाओ मामा, क्या स्वाद है?
13: अरे मेरे राजा।
14: सबका राजा आर प्योर मसाला।
15: आपने तो दीदी को एकदम धो डाला
16: इसमें जनता का जीत है मोदी जी का जीत है
17: आज के की खावे झालमुड़ी ना माचर झोल
15: हाउ विल यू सेलिब्रेट
16: झालमुड़ी माचर झोल विद रसगुल्ला
18: यू नो यू रिमेंबर यू प्रॉमिस्ड मी दैट यू विल कम टू कबिनी एंड डू एन इंटरव्यू विद मी यू लाइक गोइंग टू द फॉरेस्ट
19: दिस इज अ डिक्लेरेशन ऑफ आवर स्टेट दैट टू द एंटायर कंट्री दैट आवर केरला इज सेक्युलर
20: ये विजय बंगाल की जनता के विशेष करके मातृशक्ति की
15: वन क्लिप दैट वेंट मोस्ट वायरल was the non-interview. Cruz spent some time with him. We have these whistles out for you, and the whistles are for the fact that you got the poll right, which is quite fantastic.
21: We saw you campaigning, ma'am, for the RG Kaur victim's mother as well. You know, that was a telling moment. Do you believe that that incident in some ways was a tipping point?
22: I think that was not the only incident.
23: Tobi Puran Khule তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে
24: লঞ্চ কন্ট্রোল 0 to 100
25: This isn't just about cars and bikes this is about how you move
26: This car makes no sense yet it makes every sense
27: What we are sitting inside is a Joby powered air taxi
28: Your friend said, ye le le. We said, maybe not. Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
0: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli. Swadisht, sehatmand, har roz.
29: India's unshakable news habit. NDTV.com. is India's number one English news website.
30: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
31: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal and Sandy.
30: The show that sets the prime time agenda.
31: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
30: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
32: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
1: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands

0: challenged Chief Minister Samrat Chaudhary to remove her from her government bungalow by force, saying she would not vacate the premises voluntarily. Now, according to the notice, an alternative accommodation has already been offered to Rabdi Devi at house number 39 on Harding Road. However, the move has triggered a political slugfest, with Bihar Deputy CM calling out Rabdi Devi to follow the rules set by the government. JDU leaders also went on to slam her, asking to lead by an example and not cling to a government bungalow. With this, the RJD rallied behind Rabdi Devi, alleging that the action was politically motivated and aimed at targeting its senior leaders.
1: कई ऐसे लोग हैं, माननीय सांसद हैं, विधायक हैं, इन दोनों कैटेगरी से अलग के भी लोग हैं, जिनके पास अनाधिकृत मकान है, जो लोकसभा में चले गए हैं जीत करके और बिहार विधान परिषद के सभापति रह चुके हैं, उनके जिम्मे अलग मकान है। मकान का जो आवंटन है वो नियम के अनुसार नहीं चल रहा है। मंत्रियों के मकान आवंटित करनांकित नहीं है, उस आधार पर नहीं होता है। तो मंत्री को तो आप कहीं भी दे सकते हैं, तो बदनाम करने के लिए शेड्यूल कास्ट के मिनिस्टर को यहाँ रखा है। तो ये जानबूझ करके प्रताड़ित करने के लिए, अपमानित करने के लिए सरकार ने एक रास्ता चुना है।
2: इसमें जो नियम कानून कहता है वही होता है और सब लोगों को नियम का पालन करना।
3: जो कानून कहता है उस सवाल पर कोई हठधर्मिता नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि विपक्ष के नेता हैं। आपका जो आचरण होगा वह आपके विधायकों के लिए अनुसरण करने लायक होगा। और जब इसकी प्रक्रिया है, वैकल्पिक मकान उपलब्ध करा दिया गया है, तब हम समझते हैं कि हठधर्मिता नहीं करनी चाहिए। अरे वो तो प्रक्रिया है ना, वो तो बायलॉज बना हुआ है इसके लिए। तीन नोटिस पहले गया, ऐसा ही थोड़ी है कि जब मर्जी करेगा आप किसी का मकान में एंट्री करा दीजिए, कब खाली करा दीजिएगा। इसलिए कि सवाल इस बात का है कि सरकारी संपत्ति पर निगाह नहीं रखनी चाहिए।
4: देखिए, सरकार ने नियम बनाया और सबको नियम का पालन करना चाहिए, और खास जनप्रतिनिधि तो निश्चित तौर पर सरकार की नीति के तहत हर माननीय को चलना चाहिए, ताकि जो उसके कैटेगरी में आते हैं, मतलब उनको रहना चाहिए जा करके। तो पहले जब थे तो सरकार में थे तो रह ही रहे थे, उसके बाद भी रह रही थे। तो सरकार का नियम के आलोक में हो रहा है तो सरकार को सहयोग करना चाहिए।
5: Once again, Bangla politics is erupted in Bihar, and right now we are standing outside the 10 circular bungalow in Patna, and this is the bungala where the Lalu family is living for the last 21 years. And the newly Bihar government instructed and advised and issued a notice, a fresh notice to Rabdi Devi to vacate this bungalow and shift it to the 39 Harding Road, which is the new bungala that is allocated to the leader of opposition Rabdi Devi. And we are reporting from the 10 circular bungalow in Patna, and this is called once time a power center of Bihar politics. As you can see, a big lalten which is the symbol of RJD, you can see at the top of the gate of the 10 circular road, and you can see here the name of Srimati Rabdi Devi, Purv Mukhya Mantri Bihar. And this is the bungalow where the Lalu family is living for the last 21 years. The RJD Supremo, Tejasvi Yadav, all the top guns of RJD is living in that bungalow for the last 21 years. And now a fresh notice has been issued by the Building Construction Department to vacate this bungalow.
0: Well, that report and much more up on our website. With that, it's a wrap on this edition. Thank you so much for watching.

0: they have sent their tweets. So I have seen it. But I am told, but that time I was not in a mood to see, because we are concerned about his health, and his health condition is not that good.
1: डॉक्टर अगर सोचेगा कि आपको कुछ हुआ नहीं है, आपको सिर्फ एक पैन 40 का जरूरत है, आपको क्या हॉस्पिटल में भर्ती किया जाएगा? आपको बेड दिया जाएगा? हाँ, नाटक करने के लिए, राजनीति करने के लिए? अब डॉक्टर लास्ट बात बोलेगा ना, हम तो नहीं बोल सकते, सीएम साहब तो नहीं बोल सकते, ममता बनर्जी आप भी नहीं बोल सकते। आपका भाईपो को, आपका भांजा को पैन 40 का जरूरत था, उसके लिए भर्ती होना जरूरत नहीं था। राजनीति, फिर से बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव राजनीति मत करिए।
2: जो हुआ है अभिषेक के साथ वो नहीं होना चाहिए था। कानून किसी को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन पिछले 15 साल से जनता ने जो भुगत रही थी, एक एक व्यक्ति को सताया गया है, किसी को नहीं छोड़, सबका अधिकार को हरण किया गया है। कानून व्यवस्था नहीं, कुछ सुविधा नहीं, बस रूटता रोड बंद कर दिया घर के सामने से 10 साल से, ब्रिगेड लगा दिया गया, किसने अधिकार दिया? तो जनता की जो रोष है वो तो कहीं ना कहीं आना चाहिए। जनता कितना खपा हुआ है, देखिए फलता इलेक्शन में अब टीएमसी को 4th पोजीशन मिला है, इसी को देख के समझ जाना चाहिए, काहे रिस्क ले रहे हैं, हीरो बनने क्यों जाते हो भाई, जो जिंदगी में नहीं किया।
3: जो सत्ता में था टीएमसी का, गवर्नमेंट था ममता बनर्जी को नेतृत्व में, उसी टाइम में जो अभिषेक बंदोपाध्याय, कुंदन बंदोपाध्याय सारे, उनको स्टेट लीडर एमपी लोग ऐसा लोगों को सर मुझ मचा किया, जो जो लीडरशिप इतना दिन से आम आदमी को लेके इतने सारा जुलूम किया,
4: And amid all this, BJP has posted a video of Mamata Banerjee allegedly threatening hospital CEO, calling him arrogant over treatment given to her nephew Abhishek Banerjee. Listen in.
5: How long your head to admit effort? You forcefully don't be mistake. You need to have a patient. You be a self for it. Everybody will give him money. He's arrogant. Don't come with us. Just to see on your face. You are running the hospital. Getting the doctor. Because we have been in war. Proving to your central government is not up there to infect you. For your health, you should be safe at all. Also, you know,
4: Karnataka will usher in a new political chapter on the 3rd of June, with D.K. Shivakumar set to be sworn in as the Chief Minister. The formal election of D.K. Shivakumar as the Legislature Party leader paved the way for the oath-taking ceremony, marking the beginning of a new administration in the state. Ahead of the much-anticipated swearing-in ceremony, D.K. has affirmed that the oath even would be low-key in nature, so as to not to create any disruptions and chaos for the common public in Bengaluru. Even as preparations gather pace for the swearing-in, focus remains on the new cabinet. Key decisions on deputy chief ministers, ministerial berths are expected to reflect the party's regional and caste balancing strategy.
6: Since after the stampede and a lot of it is a working day, already my working president has communicated to everyone. Since our workers also had booked all thousands of buses. We don't want it to be chaos in the Bangalore city. About more than 17,000 vehicles they had booked. So all my police officers were just worried about the big chaos near Vidhan Sabha Stadium. So we decided to have a low-key function in swearing ceremony in Vidhan Sabha, in Lok Bhavan, Lok Bhavan. So kindly I request all my party cadres to forgive me for this gesture, we also have to help the common men also in this and take the advice of the seniors.
7: Will there be other people taking oath along with you as ministers?
8: That I don't know. Whatever the party high command decided, it will be done. I don't want to comment on that.
9: ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಇನ್ನು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಯಾವುದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಡಿಸಿಎಂ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಗಳು ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅದು 3ನೇ ತಾರೀಕು ಆದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನ ಬಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರಪೋಸಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆತ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ. ಅವ್ರು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು 15 ದಿವಸ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಂತ ಸದಸ್ಯರೇನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದ್ ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಏನ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೋ
10: पता नहीं है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये तो अंतिम तो हाईकमांड का निर्णय है. अभी तो सिर्फ अभी चर्चा तो सीएम का चल रहा है, इसके बाद भी टाइम बहुत है. अगर चाहिए तो बना सकते हैं. अभी मंत्रिमंडल तो पहला बनना है, बहुत जरूरी है, क्योंकि ज़्यादा दिन हम वैकेंट नहीं रखते सरकार को. फिर काम शुरू करना है, उसके बाद कोर कमेटी हो जाएंगे, अध्यक्ष होएंगे और चर्चा करेंगे बाद में. अंतिम निर्णय तो हमारा हाईकमांड ले लेंगे, वेट करेंगे तब तक. बेस पॉलिटिक चलता है ज्यादा, कास्ट को तो समानता में रखना चाहिए, बैलेंस करना है पहला. दूसरा जो अनुभव है, जो अच्छे इनका डिपार्टमेंट हैंडल कर सकता है, अच्छे उनका पिछले कार्यकाल अच्छा हो वो रहेंगे, और कोई अच्छा रहेंगे तो उसको हाईकमांड चूज करेंगे मंत्रिमंडल में.
4: With Karnataka's change of guard now complete, the spotlight is once again on the main person who's poised to take over as the chief minister. D.K. Sivakumar is known as much for his political maneuvering as for his unmistakable personal style. Designer scarves, luxury watches and a public image that makes no attempt to hide his wealth. And as he gets ready to occupy the state's top post, his carefully crafted brand is back in focus.

0: Welcome back. A fresh political controversy has erupted in Bihar after RJD leader and former chief minister of Rabri Devi was issued a notice to vacate her government-allotted residence at 10 Circular Road in Patna. Rabri Devi challenged Chief Minister Samrat Chaudhary to remove her from her government bungalow by force, saying she would not vacate the premises voluntarily. Now, according to the notice, an alternative accommodation has already been offered to Rabri Devi at house number 39 on Harding Road. However, the move has triggered a political slugfest, with Bihar Deputy CM calling out Rabri Devi to follow the rules set by the government. JDU leaders also went on to slam her, asking to lead by an example and not cling to a government bungalow. With this, the RJD rallied behind Rabri Devi, alleging that the action was politically motivated and aimed at targeting its senior leaders.
1: से लोग हैं, माननीय सांसद है, विधायक हैं, इन दोनों कैटेगरी से अलग के भी लोग हैं जिनके पास अनाधिकृत मकान है, जो लोकसभा में चले गए हैं जीत करके और बिहार विधान परिषद के सभापति रह चुके हैं, उनके जिम्मे अलग मकान है। मकान का जो आवंटन है वो नियम के अनुसार नहीं चल रहा है। मंत्रियों के मकान आवंटित करनांकित नहीं है, उस आधार पर नहीं होता है। तो मंत्री को तो आप कहीं भी दे सकते हैं, तो बदनाम करने के लिए शेड्यूल कास्ट के मिनिस्टर को यहाँ रखा है। तो ये जानबूझ करके प्रताड़ित करने के लिए, अपमानित करने के लिए सरकार ने एक रास्ता चुना है।
2: इसमें जो नियम कानून कहता है वही होता है और सब लोगों को नियम का पालन करना।
3: जो कानून कहता है उस सवाल पर कोई हठधर्मिता नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि विपक्ष के नेता हैं। आपका जो आचरण होगा वह आपके विधायकों के लिए अनुसरण करने लायक होगा। और जब इसकी प्रक्रिया है, वैकल्पिक मकान उपलब्ध करा दिया गया है, तब हम समझते हैं हठधर्मिता नहीं करनी चाहिए। अरे वो तो प्रक्रिया है ना, वो तो बायलॉज बना हुआ है इसके लिए। तीन नोटिस पहले गया, ऐसा ही थोड़ी है कि जब मर्जी करेगा आप किसी का मकान में एंट्री करा दीजिए, कब खाली करा दीजिएगा। इसलिए कि सवाल इस बात का है कि सरकारी संपत्ति पर निगाह नहीं रखनी चाहिए।
4: देखिए, सरकार ने नियम बनाया है और सबको नियम का पालन करना चाहिए, और खास जनप्रतिनिधि तो निश्चित तौर पर सरकार की नीति के तहत हर माननीय को चलना चाहिए, ताकि जिन जो उसके मैंने जो उसके कैटेगरी में आते हैं, मतलब उनको रहना चाहिए जाकर के। तो पहले जब थे तो सरकार में थे तो रह ही रहे थे, उसके बाद भी रह रहे थे। तो सरकार का नियम के आलोक में हो रहा है तो सरकार को सहयोग करना चाहिए।
5: Once again, Bangla politics is erupted in Bihar, and right now we are standing outside the 10 Circular Bungalow in Patna, and this is the bungalow where the Lalu family is living for the last 21 years. And the newly Bihar government instructed and advised and issued a notice, a fresh notice to Rabri Devi to vacate this bungalow and shift it to the 39 Harding Road, which is the new bungalow that is allocated to the leader of opposition Rabri Devi. And we are reporting from the 10 Circular Bungalow in Patna, and this is called once time a power center of Bihar politics. As you can see, a big lalten which is the symbol of RJD, you can see at the top of the gate of the 10 Circular Road, and you can see here the name of Srimati Rabri Devi, Purva Mukhya Mantri Bihar. And this is the bungalow where the Lalu family is living for the last 21 years. The RJD Supremo, Tejaswi Yadav, all the top guns of RJD is living in that bungalow for the last 21 years. And now a fresh notice has been issued by the Building Construction Department to vacate this bungalow.
0: Well, that report and much more up on our website. With that, it's a wrap on this edition. Thank you so much for watching.

0: बिल्कुल फैन हूँ, लेकिन विराट कोहली का भी फैन हूँ।
1: टी शर्ट आपने गुजरात टाइटन की पहनी है?
0: दिल पे कोहली है।
1: दिल में कोहली है?
0: दिल में कोहली बिल्कुल।
1: अच्छा, बाकी क्या
2: क्या है, क्या कोहली में है क्या? जो बंदा इंडिया को छोड़ के चला गया उसको क्या सपोर्ट?
1: बाकी जो हम लोगों से बात करेंगे, कैसा लगा कोहली का?
3: विराट का जैसा नाम है वैसे ही उनके आज पारी थी। बहुत ही बढ़िया खेले और वो हिंदुस्तान के लिए भी बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ अचीव किया है। बहुत
1: कैसा लगा?
4: कोहली ने अच्छा खेला। सब लोग ऐसा बोल रहे कि कोहली कोहली कोहली, ऐसा कुछ नहीं है। आरसीबी की टीम में हर एक प्लेयर ने अच्छा किया है। पूरी
1: सब लोग कहाँ से?
4: पूरी टूर्नामेंट में हर एक प्लेयर ने अच्छा किया है।
1: कहाँ से?
4: यहीं से हो, अहमदाबाद
1: से हो। लेकिन ये दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू दैट ऑल दीज पीपल आर फ्रॉम अहमदाबाद एंड दे आर सपोर्टिंग गुजरात। You are supporting
4: RCB, yeah. This team is going to break the records by winning again and again and again. This is a solid team.
5: RCB,
2: GT,
5: awade, Rexier, awade.

0: वह आपके विधायकों के लिए अनुसरण करने लायक होगा। और जब इसकी प्रक्रिया है, वैकल्पिक मकान उपलब्ध करा दिया गया है, तब हम समझते घटधर्मिता नहीं करनी चाहिए। अरे वो तो प्रक्रिया है ना, वो तो बायलॉज बना हुआ है इसके लिए। 3 नोटिस पहले गया, ऐसा ही थोड़ी है कि जब मर्जी करेगा आप किसी का मकान में एंट्री करा दीजिए, कब खाली करा दीजिएगा। इसलिए कि सवाल इस बात का है कि सरकारी संपत्ति पर निगाह नहीं रखनी चाहिए।
1: देखिए, सरकार ने नियम बनाए और सबको नियम का पालन करना चाहिए, और खास जनप्रतिनिधि तो निश्चित तौर पर सरकार की नीति के तहत हर मान्य को चलना चाहिए, ताकि जिन जो उसके मैंने जो उसके कैटेगरी में आते हैं, मतलब उनको रहना चाहिए जब तक। तो पहले जब थे तो सरकार में थे तो रह ही रहे थे, उसके बाद भी रह रही थी। तो सरकार का नियम के आलोक में हो रहा है तो सरकार को सहयोग करना चाहिए।
2: Once again, Bangla politics is erupted in Bihar, and right now we are standing outside the 10 circular bungalow in Patna, and this is the bungalow where the Lalu family is living for the last 21 years. And the newly Bihar government instructed and advised and issued a notice, a fresh notice to Rabri Devi to vacate this bungalow and shift it to the 39 Harding Road, which is the new bungalow that is allocated to the leader of opposition Rabri Devi. And we are reporting from the 10 circular bungalow in Patna, and this is called once time a power center of Bihar politics. As you can see, a big lalten which is the symbol of RJD, you can see at the top of the gate of the 10 circular road, and you can see here the name of Srimati Rabri Devi, Purva Mukhyamantri Bihar. And this is the bungalow where the Lalu family is living for the last 21 years. The RJD Supremo Tejaswi Yadav, all the top guns of RJD is living in that bungalow for the last 21 years. And now a fresh notice has been issued by the Building Construction Department to vacate this bungalow.
3: Well, that report and much more up on our website. With that, it's a wrap on this edition. Thank you so much for watching.